एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 अगस्त सन 2026। अभी प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिसे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देशभर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

0: शीला वर्मा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है पशुओं में विटामिन के का महत्व। वाचक अभिनव गौरहा है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। मानव और पशु दोनों मन लहे दैनिक जीवन में जमो काम करे बर ऊर्जा के जरूरत होते, जेकर पूर्ति बर हम आनी बानी प्रकार के खाद्य पदार्थ के सेवन करथन कराथन, जेकर मुख्य अवयव होते कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन। विटामिन के मतलब कोनो ऐसा जैविक और अति महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ से है जेकर हमन ला बड़ सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होते। विटामिन दो तरह के होते, जल में, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील होते, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन होते। आज के जानकारी मैं जानबो कि पशु और मुर्गी मन में विटामिन ए के महत्व कौन ढंग ले होते। पशु मन में मुर्गी के स्वास्थ्य और प्रजनन में विटामिन ए के उपयोग के जानकारी आप मन लदी ते भ्रूण के समुचित विकास बर बड़ लाभकारी माने जाते। त्वचा और स्वास्थ्य वर्धक होते, रक्त में कैल्शियम के स्तर बनाए रखे और हड्डी के संवर्धन करे बर जरूरी होते। हड्डी, दांत और उतक के रख रखाव बर आवश्यक होते। ऊर्जा पैदा करे वाले जम्मो कोशिका मन लेकर जरूरत होते। विटामिन ए सफेद रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक करके प्रतिरक्षा प्रणाली में जीवाणु और विषाणु लड़े में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। कुकुट मन में विटामिन ए की कमी से न्यूट्रिशनल राउप नामक बीमारी पाचन तंत्र के आहार नाल में होते। कुकुट मन में विटामिन ए की कमी से हड्डी में सूजन मतलब गाउट रोग की संभावना बढ़ जाते। एकर अलावा अंडा के उत्पादन कम होते। अंडा ला से के बाद जिंदा चूजा मन कम आते, चूजा के विकास रुक जाते और कुकुट के पंख के विकास भी उचित नहीं हो पावे। विटामिन ए पशु के प्रजनन में बड़ लाभदायक भूमिका निभाते। मादा पशु के गर्भकाल के दौरान माता और माता के गर्भ में पल रहे शिशु के बीच गर्भनाल या प्लेसेंटा से पोषक तत्व ला खून के माध्यम से आदान प्रदान होते। विटामिन ए के कमी से गर्भनाल के कोशिका के क्षरण हो जाते और कई पैत जन्म के समय से पहले ही मादा के गर्भ में शिशु के मृत्यु हो सकते है। विटामिन ए के कमी से नर पशु के शुक्राणु की संख्या कम हो सकते है और प्रजनन क्षमता घट सकते है। गर्भकाल के समय या बचपन में विटामिन ए की कमी होए से मानसिक परेशानी हो सकते है, जैसे उखर मूड के ऊपर पानी भर जाना, ये सब समस्या आ सकते है। ये दोनों मौका में हम पशु के मुड़े में टेनिस बॉल या फुटबॉल के आकार के उभार देख सकते हैं। गर्भकाल में विटामिन ए की कमी से जन्म

0: बीमारी या व्याधि जैसे अंधापन, आंखी मत, बाल के होना, आंखी के भाव, आंखी के छोटापन, अविकसित पैर, कटे फटे तालू, कटे फटे होंठ हो सकते हैं। विटामिन ए के कमी ला पूरा कैसे करी? विटामिन ए कमी ला दूर करे बर पशुपालक अपन पशु और कुकुट मन ला विटामिन ए के स्रोत के जैसे हरा चारा, संतुलित आहार, फिश मील और मीट मील आहार के संग मिला के दे। बाजार में विटामिन ए के दवाई घलो मिलते। पशु चिकित्सक मन से सलाह लेके पशु मन ला कुकुट मन ला विटामिन ए के दवाई दे सकत है, जेकर से हमर पशु मन के अवैया पीढ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सकी। तो कुल मिला के किसान भाई हो, हमन अगर पशु मन ला आनी बानी के जेन उखर खवाए बर व्यवस्था थे बाजार में मिलते वो सब के उपयोग प्रयोग करना चाहिए। हरियर चारा भी ओमन लखवात रहन, पैरा ला उपचारित करके देत रही वो, ये सब व्यवस्था करे से हमर पशु मन ला जम्मो प्रकार के विटामिन, खनिज, मिनरल मिलत रही थे, जेकर से उखर दूध उत्पादन, उखर शारीरिक गतिविधि बढ़िया ढंग से चलत रही थी। तो ये बात के चेत करना है के पशु मन ला केवल पैरा मा निर्भर नहीं रखना है, उखरो चेत करें तभी हमन ला लाभ मिलही। राम राम, जय जोहार।
1: पशुओं में विटामिन के का महत्व, इस विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। वाचक थे अभिनव गौरहा। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक हैं श्रीकांत पारगांवकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में, जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनयपूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरितमानस का। मुख्य गायक थे श्रीकांत बारगांवकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। नवविहान में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की। श्रोताओं, किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था, तकनीक या संसाधनों में नहीं होती, बल्कि उस देश के शिक्षित, जागरूक और कुशल नागरिकों में होती है। शिक्षा वो माध्यम है जो एक बच्चे को केवल किताब का ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे सोचने, समझने, सवाल पूछने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर देती है। इसी सोच के साथ भारत में शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और सभी तक पहुंचाने वाले कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिन्हें व्यापक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत आगे बढ़ाया गया है। इस मिशन का मूल उद्देश्य है देश के हर बच्चे और युवा को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रह जाए। भारत जैसा विशाल देश और विविधता वाले देश में शिक्षा की चुनौतियां भी अलग अलग हैं। कहीं विद्यालय दूर है, कहीं संसाधनों की कमी है, कहीं बच्चों का स्कूल छोड़ना बड़ी समस्या है और कहीं डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सीमित है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में केवल स्कूल खोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छी पढ़ाई, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक संसाधन, तकनीक और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसी दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत समग्र शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम बेहतर करना, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना और बच्चों को सुरक्षित तथा अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। श्रोताओं, अब सवाल यह है कि इसका लाभ आम जनता कैसे ले सकती है। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में बच्चा स्कूल जाने की उम्र का है तो उसे विद्यालय में दाखिला जरूर दिलाएं। सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, छात्रवृत्तियों, पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म, डिजिटल संसाधनों और अन्य सहायता के बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य या संबंधित शिक्षा विभाग से जानकारी ली जा सकती है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों, बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए किसी भी अभिभावक

आपको केवल आर्थिक परेशानी के कारण बच्चे की पढ़ाई रोकने की ज़रूरत नहीं है। अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल, जिला शिक्षा कार्यालय या संबंधित शिक्षा विभाग से उपलब्ध योजनाओं की जानकारी लेना इसका पहला कदम हो सकता है। आज शिक्षा केवल ब्लैक बोर्ड और किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, डिजिटल तकनीक ने सीखने के नए रास्ते खोले हैं। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक शैक्षणिक सामग्री, वीडियो, पाठ और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसका महत्व खासकर उन विद्यार्थियों के लिए बढ़ जाता है जिन्हें अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का एक महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षक भी हैं श्रोताओं, क्योंकि अच्छी शिक्षा की नींव अच्छे शिक्षक ही रखते हैं। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण, नई शिक्षण पद्धतियों और तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। आज का विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी ना बने, बल्कि उसमें रचनात्मकता, तर्क करने की क्षमता, समस्या का समाधान करने की क्षमता और जीवन कौशल भी विकसित हो, ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी शिक्षा को अधिक समग्र और कौशल आधारित बनाने पर जोर दिया है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण बदलावों की दिशा तय की है। मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में सीखने, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीक के उपयोग और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को भी महत्व दिया है। नव विहान में आज चर्चा का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। हमारा प्रसारण आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रही है FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज की शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

सुबह 7:05 पर प्रतिदिन की तरह हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह। सुबह 7:30 पर आनंद लीजिएगा यादों के झरोखे से कार्यक्रम का। सुबह 8:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम अमराई। कलाकार होंगे केदार यादव, सुनीता थवाइत, साधना यादव और साथी। आज हम पेश करेंगे राखी गीत, जिसे सुनिएगा सहारो बाई, प्रकाश देवांगन, माया खपर्डे, सुरेंद्र मधुकर, ज्योति चौहान और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत का प्रसारण समय होगा सुबह 10:00। प्रस्तुतकर्ता होंगे महावीर बरगाह। कार्यक्रम आपकी पसंद हम पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा सुबह 11:00।

संध्या 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। संध्या 5:05 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युवा जगत हम लेकर आएंगे। संध्या 5:35 पर आज की बात में चर्चा का विषय होगा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए गणित और अंग्रेजी का अध्ययन कैसे करें। क्रम होगा कला साहित्य का, जिसमें आप सुनेंगे भगवती चरण बोहरा स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान विषय पर चर्चा। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का समय होगा 6:20 पर और 7:00 बजे ग्राम सभा की ओर हम बढ़ेंगे 7:30 पर।

बेरा की गोठ में चर्चा का विषय होगा दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भेंट वार्ता का विषय होगा बिलासपुर जिले में जलवायु अनुकूल फलोद्यान की स्थापना। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पलता तिर्की और भेंट करता होंगे चैतु भैया। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में हम सुनवाएंगे आपको सपना अवस्थी के तरानों को। रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही देर में अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू

0: मुद्दे बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

श्रोताओं, सावन नाम लेते ही जैसे मन में ठंडी सी फुहार पड़ने लगती है। आसमान में घिरे बादल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर चमकती हरियाली और बारिश की बूंदों के साथ खिलती एक अलग सी खुशी। सावन अपने साथ सिर्फ मौसम नहीं लाता, बल्कि अपने साथ उमंग, आस्था, हरियाली और प्रकृति के करीब आने का एहसास भी लेकर आता है। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो क्यों ना आज हम मन ही मन एक छोटा सा संकल्प लें कि जिस प्रकृति ने हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए अन्न दिया है, उसकी थोड़ी सी देखभाल हम भी करेंगे। श्रोताओं, प्रकृति हमसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगती, उसे बस इतना चाहिए कि हम सड़क पर कूड़ा ना फेंकें, प्लास्टिक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, पानी को बेवजह बर्बाद ना करें और अपने आसपास एक पेड़ लगाने या किसी पेड़ को बचाने की कोशिश करें। बारिश के मौसम में स्वच्छता का महत्व और भी बढ़ जाता है। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, कचरा खुले में ना डालें और अपने मोहल्ले, गांव या शहर को साफ रखने में अपनी छोटी छोटी भूमिका भी हम निभा सकते हैं। साथ ही सावन और इस बारिश के मौसम का आनंद लेना भी मत भूलिएगा। बारिश हो तो कुछ पल खिड़की के पास बैठकर बूंदों को देखिए, मिट्टी की खुशबू को महसूस कीजिए, बच्चों को बारिश में भीगते और खिलखिलाते देखिए, पेड़ पौधों की धुली हुई

जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसे छोटे छोटे पल ही तो मन को असली सुकून देते हैं। सावन हमें शायद यही खूबसूरत बात सिखाता है कि प्रकृति को सिर्फ देखने और महसूस करने की चीज़ ना समझें, उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज सावन के इस आखिरी सोमवार पर एक छोटी सी कामना करते हैं कि हमारे आसपास हरियाली बनी रहे, नदियाँ स्वच्छ रहे, हवा साफ बहे, बारिश खुशियाँ लेकर आए और आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी खूबसूरत प्रकृति को देख सके जिसे हम आज महसूस कर रहे हैं। सावन की विदाई हो रही है, लेकिन क्यों ना इसकी हरियाली और इसकी सीख को हम अपने साथ पूरे साल लेकर चलें।

0: श्रोताओं, लीजिए पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: स्वीकार कीजिए नमस्कार उमाशंकर पांडे का। लीजिए सुनिए अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था की जानकारी। दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट सब बिलासपुर में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सावन महोत्सव अर्थात इस वर्ष के सावन माह का आज चौथा और अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर बड़े सुबह से ही मंदिरों में सड़कों में काफी चहल पहल है। सड़कों में चलने वालों में अधिकांश कोई शिव मंदिर जा रहा है या कोई मंदिर से वापस आ रहा है। प्रायः हर मंदिरों के साथ साथ तमाम घरों में भी तमाम प्रकार से भगवान रुद्र जी का अभिषेक चल रहा है। लोगों में बहुत अधिक उत्साह है। सभी भक्तों से अनुरोध है उत्साह के साथ साथ अपनी और दूसरों की भी सुरक्षा और सावधानी का पूरा पूरा ध्यान रखें। सड़क के किनारे चलें। मंदिर आने वाले भक्त अपने वाहन सड़क के किनारे व्यवस्थित रखें। सभी वाहन चालक आज सड़कों में विशेष सावधानी के साथ धीरे चलें। मित्रों, विगत रात बेलपान से आया कांवड़ यात्रियों का भगवा सैलाब जो रतनपुर माँ महामाया धाम के धर्मशाला में ठहरा था, आज सभी कांवड़ यात्री बोल बम के जय घोष के साथ साथ बूढ़ा महादेव मंदिर के लिए कूच कर चुके हैं। इस कांवड़ यात्रा में लगभग 10 से 15,000 कांवड़ यात्रियों के शामिल होने का आयोजन समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है। अर्थात रतनपुर की पूरी सड़क में सिर्फ कांवड़ यात्रियों की धारा दिखाई देगी। सभी कांवड़ यात्रियों से पुनः अनुरोध है, ध्यान रखें आप मुख्य सड़क पर हैं जहां छोटे बड़े तमाम प्रकार के वाहन भी चल रहे हैं, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सड़क के एक किनारे चलें और फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे वाहनों के आने पर इसे तत्काल साइड देवें। सभी वाहन चालक यहां पर बिल्कुल मंद गति में चलें। सभी कांवड़ यात्री जल अभिषेक पश्चात विभिन्न वाहनों से चारों दिशाओं में अपने अपने घर भी जाएंगे। उस समय विशेष सावधानी सतर्कता बरतें क्योंकि अधिकांश लोग दो पहिया वाहन में होंगे। दो पहिया में तीन सवारी ना चले, हेलमेट अवश्य पहने। साथ ही कांवड़ यात्रियों के साथ साथ सभी मंदिर आने जाने वाले भक्तों से निवेदन है, ट्रैक्टर पिकअप मेटाडोर या मालवाहक ऑटो में कभी भी यात्रा न करें, यह घातक है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। शहर के प्रमुख मार्गों और व्यस्त चौराहों से जुड़ी ज़रूरी जानकारी। लेकिन ट्रैफिक की ये जानकारी सिर्फ हमें ये बताने के लिए नहीं होती कि कहाँ रास्ता व्यस्त है और कहाँ यातायात सुचारू। इसके पीछे एक और ज़रूरी मकसद है, हमारा सफ़र सुरक्षित हो। क्योंकि सड़क पर हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ सड़क पर पैदल चलने वाले लोग हैं, साइकिल सवार हैं, दो पहिया वाहन चालक हैं, कार और बस चलाने वाले लोग भी हैं। यानी सड़क पर हर व्यक्ति की सुरक्षा कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी से भी जुड़ी हुई है। ज़रा सोचिए, हम घर से निकलते हैं तो चाहते हैं कि हम अपने काम पर सुरक्षित पहुँचे और शाम को सुरक्षित घर वापस लौटें। हमारे परिवार वाले भी यही चाहते होंगे, तो फिर क्यों हम सड़क पर चलते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखें। सड़क पर सबसे पहली जिम्मेदारी यातायात

नियमों का पालन करने की है। लाल बत्ती है तो रुक जाए, हरी बत्ती है तो आगे बढ़ें, पीली बत्ती देखकर सावधान हो जाए। सिर्फ इसलिए कि सड़क खाली दिखाई दे रही है, सिग्नल तोड़ देना समझदारी नहीं है श्रोताओं, क्योंकि सड़क पर नियम हमारी सुविधा के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना अपनी आदत बनाएं। कई बार लोग घर से थोड़ी ही दूर

0: और चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना अपनी आदत बनाएं। कई बार लोग घर से थोड़ी ही दूर जाना हो तो हेलमेट या सीट बेल्ट को ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन दुर्घटना ये देखकर नहीं होती कि आप कितनी दूर जा रहे हैं। एक छोटी सी दूरी भी सुरक्षित तरीके से तय करना उतना ही ज़रूरी है। गति पर नियंत्रण भी सुरक्षा का हिस्सा है श्रोताओं। हमें अक्सर लगता है कि गाड़ी जितनी तेज़ चलेगी हम उतनी जल्दी अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे, लेकिन कुछ मिनट बचाने के लिए अगर हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डाल दें तो ऐसी जल्दबाजी किस काम की। खासकर व्यस्त चौराहों, स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गति धीमी रखनी चाहिए और सड़क पर पूरी तरह ध्यान दें। बारिश, कोहरा या रात के समय तो और भी सावधानी ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन सड़क पर सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला कारण है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर कॉल करना, मैसेज पढ़ना, वीडियो देखना या सोशल मीडिया चलाना, इनमें से कोई भी काम सड़क पर आपकी एकाग्रता को भटका सकता है। एक सेकंड के लिए नज़र सड़क से हटना भी भारी पड़ सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय मोबाइल को हाथ से दूर रखिए। ज़रूरी कॉल है तो सुरक्षित जगह पर वाहन रोक कर फिर बात की जा सकती है। ओवरटेक करते समय जल्दबाजी नहीं करें। सड़क पर आगे निकलने की होड़ में कई बार लोग गलत दिशा से ओवरटेक करने लगते हैं या बिना संकेत दिए ही लेन बदल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि सड़क कोई रेस का ट्रैक नहीं है। ओवरटेक तभी करें जब पर्याप्त जगह हो, सामने से कोई वाहन ना आ रहा हो और आपको पूरा भरोसा हो कि ऐसा करना सुरक्षित है। लेन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और दूसरे वाहन चालकों को अपने इरादे का संकेत दें। पैदल चलने वालों का भी उतना ही अधिकार है, सड़क सिर्फ वाहन चलाने वालों के लिए नहीं होती है श्रोताओं। जहाँ पैदल यात्रियों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, वहाँ चालक उन्हें रास्ता देने के लिए तैयार रहें। स्कूल के आसपास बच्चों के प्रति विशेष सावधानी बरतें। कई बार बच्चे अचानक सड़क पर आ जाते हैं, इसलिए स्कूल, बाजार और आवासीय इलाकों में गति नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, अगली बार जब आप वाहन लेकर सड़क पर निकलें तो सिर्फ अपने गंतव्य के बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए और उन तमाम लोगों के बारे में भी सोचिए जो उसी सड़क पर आपके साथ सफर कर रहे हैं।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोताओं, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा संबंधित एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752-266592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, जरा एक पल के लिए रात के आसमान की ओर देखिए। अनगिनत चमकते तारों के बीच हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी दिखाई देगी, लेकिन इसी विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी हमारे लिए पूरी कायनात है। यही वो ग्रह है जहाँ जीवन है, जहाँ पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, समुद्र है, पहाड़ है और सबसे बढ़कर हम हैं। हम जिस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं वो इतना विशाल है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं और हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे

में करोड़ों अरबों तारे हैं। इन्हीं तारों में से एक है हमारा सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का परिवार कहलाता है सौरमंडल। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें हमारी पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और अब तक ज्ञात ग्रहों में जीवन का सबसे अनोखा घर भी। पृथ्वी की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक है कि यहाँ तरल पानी की मौजूदगी है। इसके चारों ओर वायुमंडल है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। पृथ्वी का तापमान भी ऐसा है कि यहाँ पानी तरल अवस्था में रह सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य से आने वाले कई हानिकारक कणों से बचाता है, और इसका उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के मौसम, समुद्री ज्वार भाटे और हमारी रातों को एक अलग पहचान देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल की सीमा के पास एक ऐसी दुनिया भी है जिसे कभी हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था? हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो की खोज 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने की थी। लंबे समय तक किताबों में हमारे सौरमंडल के 9 ग्रह बताए जाते रहे और प्लूटो उनमें सबसे दूर स्थित ग्रह था। लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में कई नई जानकारियां मिली। प्लूटो पृथ्वी से बहुत छोटा है। इसका आकार हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। ये सूर्य से इतनी दूर है कि वहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में भी कई घंटे लगते हैं। वहां का वातावरण बहुत विरल और तापमान बहुत कम रहता है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि प्लूटो छोटा क्यों है। असल सवाल था, क्या केवल छोटा आकार ही किसी खगोलीय पिंड को ग्रह बनने से रोक देता है? तो इसका जवाब है नहीं। साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की परिभाषा को स्पष्ट किया। किसी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 प्रमुख शर्तें तय की गई। पहली ये कि वो सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरी कि उसका गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वो लगभग गोल आकार प्राप्त कर सके। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को अन्य समान आकार के पिंडों से काफ़ी हद तक साफ कर दिया हो। प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है। वो सूर्य की परिक्रमा करता है, उसका गुरुत्वाकर्षण उसे लगभग गोल आकार भी देता है, लेकिन तीसरी शर्त पर प्लूटो पीछे रह गया। प्लूटो जिस क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करता है वो काइपर बेल्ट नामक क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ प्लूटो के आसपास उसके जैसे कई बर्फीले और छोटे खगोलीय पिंड मौजूद हैं। यानी प्लूटो ने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र पर उस तरह का प्रभुत्व स्थापित नहीं किया जैसा 8 प्रमुख ग्रहों ने अपनी अपनी कक्षाओं में किया। इसी वैज्ञानिक आधार पर 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाकर बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया। श्रोताओं, ग्रह हो या बौना ग्रह, ब्रह्मांड का हर संसार हमें कुछ नया जानने, समझने और सवाल पूछने का अवसर देता है। क्योंकि विज्ञान की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि हम जितना जानते हैं उतना ही महसूस होता है कि अभी जानना बाकी है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ अब दीजिए हमें अनुमति, कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। आनंद लीजिए यादों के झरोखे से कार्यक्रम का।

आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ में तेरे घर के सामने फिल्म का ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल थे, एसडी बर्मन का संगीत था। आइए सुनते हैं रवि की तर्ज पर शकील बदायूनी की रचना को। गायकी मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की है और फिल्म का नाम है घराना।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: लव इन टोक्यो फिल्म से हम पेश कर रहे हैं हसरत जयपुरी की रचना। धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, आवाज लता मंगेशकर की है।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: महिला सभा हेतु ये सूचना सुनिए। फोन करिए, गीत सुने कार्यक्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः

11 बजे से 11:30 मिनट के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भवः। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनका नाम है बातों बातों में, क्या कहना और जब वी मीट। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266-592। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, अगला गीत हम लेकर आए हैं SH बिहारी की तर्ज पर कश्मीर की कली फिल्म से। ओपी नैयर की रचना को स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिएगा प्यार ही प्यार फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यादों के झरोखे से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्यार ही प्यार फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेष

0: विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुँच

0: कर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम की निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्ले ऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है। देश में H1N1 का

0: कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल इनॉग्रेट द 2-डे 9th नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली टुडे। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
4: The 2-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference in 2016, Prime Minister Narendra Modi had directed the security and police heads to hold the national

0: chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kanizsa Open title in Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम अमराई। आज के कलाकार हैं केदार यादव, सुनीता थवाइत, साधना यादव और साथी। साथ ही में राखी गीत हम लेकर आए हैं सहारोबाई, प्रकाश देवांगन, माया खपर्डे, सुरेंद्र मधुकर और ज्योति चौहान की आवाज़ों में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं केदार यादव और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ।

आपने सुना केदार यादव और साथियों की आवाज़ों में लोकगीत, आइए सुनते हैं राखी गीत सहारो बाई की आवाज़ में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम अमराई की आखिरी पेशकश सुनिए केदार यादव और साधना यादव की आवाजों में।

केदार यादव और साधना यादव के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम अंबराई यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती।

सलीम मर्चेंट और बनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे बैंड बाजा बारात फिल्म से ये गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक सलीम सुलेमान का। अगला गाना कर सकता है आपको थिरकने पे मजबूर। सुनते हैं ट्यूबलाइट फिल्म से ये गाना। कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: से आप सुन रहे थे अनुष्का मनचंदा, न्यूमन पिंटो की आवाज में गाना, जावेद अख्तर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक

0: एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा की आवाज में लक बाय चांस इस फिल्म से एक गाना, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान, लॉय का म्यूजिक।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर।

दोस्तों आनंद जी का जन्म 1932 में आज ही के दिन यानी 2 मार्च को हुआ है कच्छ भूज के गांव कुंडरोडी में। वैसे दोस्तों संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी एक रूप हैं, तो केवल आनंद जी की बात नहीं होगी साथ ही साथ कल्याण जी की भी बात होगी। कल्याण जी आनंद जी फिल्म संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे हम कह सकते हैं दो जिस्म एक जान। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कल्याण जी और आनंद जी दो भाइयों के नाम हैं, पर वो यूं याद किए जाते हैं।

0: मिलके।
1: वैसे वो दौर जोड़ीदार संगीतकारों का नहीं था, केवल शंकर जयकिशन ही एक नामी गिरामी जोड़ी उस दौर में थी। बाकी सारे संगीतकार जो थे, जो टॉप के संगीतकार थे, वो सब अकेले ही अपने संगीत का काम किया करते थे। हाँ, ये बात और है कि उनके साथ होते थे असिस्टेंट्स, अरेंजर्स वगैरह, पर कल्याण जी आनंद जी वो पहली जोड़ी थी जिसने ऐसे जोड़ीदार संगीतकारों के लिए राहें रोशन की।

दोस्तों संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पहले जो जोड़ी लोकप्रिय थी वो थी शंकर जयकिशन की। इनके अलावा इनके भी पहले जो संगीतकार जोड़ी थी वो पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम की। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं पहले कल्याण जी वीर जी शाह इस नाम से कल्याण जी भाई संगीत दिया करते थे। कल्याण जी का जन्म कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी में 30 जून 1928 को हुआ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत सफर शुरू हुआ है मुंबई के गिरगांव से, जहां उनके पिता वीर जी भाई शाह कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी से आकर मुंबई के गिरगांव इलाके में किराना माल की दुकान चलाया करते थे। उनके एक ग्राहक ऐसे थे जो संगीत के मर्मज्ञ थे, उन्हीं से कल्याण जी भाई ने प्रथम संगीत की दीक्षा ग्रहण की। वही बात आनंद जी के साथ भी हुई, दोनों ही भाई एक ही गुरु से संगीत की शिक्षा पाते रहे। दोस्तों मुंबई वैसे ही कला नगरी है और गिरगांव में संगीत की जानकारी रखने वाले कई माहिर उस दौर में रहा करते थे। इस जगह से थोड़ी ही दूरी पर संगीत का एक जाना माना घराना भी था, भेंडी बाजार घराना। कई संगीतकार यहाँ रहा करते थे, स्नेहल भाटकर, दत्ताराम वाडकर, ये नाम उल्लेखनीय हैं। तो कल्याण जी ने संगीत में करियर करने की ठान ली। शुरुआत के दौर में बतौर सपोर्टिंग संगीतकार वो काम करते रहे। अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार के लिए फिल्म नागिन में उन्होंने क्ले वायलिन पर जो धुन बजाई जिससे उनका नाम सबकी जुबान पर आ गया।

0: नारायण जी भाई जब विविध भारती के स्टूडियो पधारे थे तो उन्होंने जो बातें कही थी, सुनते हैं उन्हीं से उनके अपने विचार।
1: हर सिचुएशन जो है गाने की, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कोई तो होगा। तो गिरगांव में हम रहते थे तो दत्तवन गुजराती लोग बनिए जो हैं वो दत्तवन करते हैं, तो दत्तवन लेने के लिए पिताजी ने मुझे भेजा। ये होता था कि दत्तवन जो अच्छे ले आता तो समझदार लड़का है, तो ये एक एग्जाम्पल होता था। तो दत्तवन लेने को भेजा मुझे, तो वहाँ पे दत्तवन काटने वाली लड़की जो है दत्तवन काट रही थी और उसको बीच में जो जहाँ पे ये होते हैं ना गठान, उनको काट के फेंक देती है। तो बैठे बैठे वो सामने वाले लड़के को मार रही थी, तो उसने भी फिर चिल्ला के बोला, हे क्या कर रहे तू, ये कर रही है। तो उसने बोला कि तेरे को मैं मने में थोड़ी मना किया, तू भी मारना। तो एक मुखड़ा आ गया कि भाई देखो ये एंगल रोमांस का ये भी है, तो उसका भी उस भाषा में तो लिख नहीं सकते। तो कंकरिया हमारे करके इशारे यूं करके रख दिया था कि भाई इसको कहीं आएगा तो बोलेंगे कि भाई डाल दो। जहाँ पे वो सिचुएशन आई कि मटके लेके निकल रही, तो बोले ये ऐसे कोई डाल दो कि मटकी के साथ लिंक आ जाए। तो हमने बोला ये करो, तो वो गाना उसमें डाल दिया।

कल्याण जी भाई ने इसी दौरान कल्याण जी वीर जी और पार्टी नामक एक सांगीतिक ग्रुप भी बनाया था, जो संगीत का जीवंत शो यानी लाइव ऑर्केस्ट्रा किया करता था। ये इस प्रकार का पहला लाइव म्यूजिकल शो हुआ करता था।

मेरे देश की धरती के इस देश की धरती, पहले लिखा गया था कि इस देश की धरती सोना उगले उगले ही थी उड़ती। तो मैं बोला एक तो उगले सब समझेंगे नहीं, तो बोले नहीं वहाँ तो समझते उगले, आपके वहाँ उगले नहीं समझते होंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं बोला जो आसान तरीका है, इस गाने में बंद हो जाता है और मेरे अपना लगता है, अपनेपन का एहसास होता है। तो इस पे बहस चल रही थी कि इस रखें कि मेरे रखें। तो इतने उसमें 4-5 दिन जब भी सिटिंग होती थी कि भाई क्या रखें, मेरे रखें कि इस रखें, इस रखें कि मेरे रखें, क्यों करते करते आखिर में मेरे देश की धरती और ये गाने ने

यहाँ तक कल्याण जी भाई के साथ बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे आनंद जी भाई, पर जब इन्हें फिल्म सट्टा बाजार मिली तो पहली बार संगीतकार के रूप में पर्दे पर नाम उभरा कल्याण जी आनंद जी। इस जोड़ी के लिए और संगीत के चाहने वालों के लिए ये फिल्म एक यादगार फिल्म है। कल्याण जी आनंद जी को एक के बाद एक तीन फिल्में मिली जिनका संगीत लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। 1959 में मदारी और सट्टा बाजार।

1961 में आई थी फिल्म छलिया। फिल्म छलिया का निर्माण किया था सुभाष देसाई ने और इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। राज कपूर और नूतन की इसमें जोड़ी थी।

0: दोनों ही फिल्मों का संगीत जबरदस्त हिट रहा और कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी का शुमार अव्वल दर्जे के संगीतकारों में होने लगा। इस जोड़ी ने फिल्म संगीत में जो वैरायटी दी है वो कमाल की है। देशभक्ति के जज्बे से लबरेज उपकार फिल्म का ये गाना देश गान के रूप में जैसे पूजा जाता है।
1: बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं,

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुल 250 के आसपास फिल्मों में संगीत दिया है दोस्तों, जिनमें से 17 फिल्में गोल्डन जुबली हिट हुई हैं और 39 फिल्में सिल्वर जुबली। मानवीय भावों को सशक्त रूप से अपनी रचनाओं में पिरोना बड़ा ही कठिन काम होता है, इसके लिए उच्च कोटि की सांगीतिक बुद्धि की तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही अथक परिश्रम की भी जरूरत होती है, तब कहीं जाकर कोई रचना संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। मुकेश के गाए कितने ही गमगीन गाने संगीत की महफिलों में आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं।

लता मंगेशकर के लिए कल्याण जी आनंद जी ने 297 गाने बनाए हैं। दोस्तों, इसी संगीतकार द्वारा लता जी के लिए कंपोज करने का एक तरह का जो रिकॉर्ड है, ऐसा करने वालों में उनका नाम तीसरे नंबर पर आता है।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए। प्रादेशिक समाचार सुनिए आकाशवाणी रायपुर से।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगले साल मार्च तक 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है और

0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले साल मार्च तक 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम के समापन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 95,000 घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का सम्मान करेंगे। वहीं 18 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 39,67,00,000 रूपये की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे। इस राशि से श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईसीएमआर के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल से ठीक हो जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। यह स्थिति अगले 6 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मुंगेली जिले के ग्राम पंडरभट्टा में रविवार को खेत में काम करने के बाद लौट रही 46 वर्षीय महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खोंगापानी नगर पंचायत में स्थित बड़ा तालाब में नहाने गए 3 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख एक स्थानीय युवक ने डूब रहे बच्चों में से 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और उसका पता नहीं चल सका है। आज सावन मास का चौथा और अंतिम सोमवार है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में विशेष पूजन और रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के 30 गांव में आज आयुष्मान कैंप लगाया गया है, जहां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ग्रामीण अपनी सुविधा के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान 186 टीमें तैनात रहेंगी। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते में होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थयात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यह यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक पहुंचने के साथ ही यह संपन्न हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगले साल मार्च तक 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति है महावीर बरगाह गीत।

0: कार्यक्रम सुनोइया और फोन करोइया जम्मो श्रोता संगवारी मल्ला महावीर बरगाह के जय जोहार। संगी हो, सावन चलत है और माटी के महक सुहावन, धान के कटोरा के धरती सबके मल्ला भावत है। अरपा पैरी के निर्मल धारा नदिया गावत है गीत, अब गांव गांव में गूंजत रहते अपन संस्कृति के रीत। तो शुरू करी कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत और ले थन आज के पहली फोन कॉल। हेलो, स्वागत है कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में। कौन बोला था?
1: मैं नीलम बारिक कहता हूँ भुवनेश्वर से। पहली
0: ओहो, अब बड़ दूरिया ले हमारे श्रोतावन फोन करे हैं।
1: बार लगे है, अतका खुशी लगत है कि जन पूछा,
0: हमरो
1: और
0: मन।
1: एकदम स्पेशल
0: हाँ
1: दिन में लगे है हमोर
0: अच्छा, हाँ
1: जी।
0: काश।
1: और आज मोर जन्मदिन है
0: ओहो,
1: तो
0: तो बधाई भाई,
1: आज
0: हमरों ले बधाई
1: आपके
0: झोका जन्मदिन आकाशवाणी
1: तब
0: बिलासपुर तरफ ले झोका।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: का का भाई दिनचर्या रही आज जन्मदिन है ता?
1: एक गृहिणी के हिसाब से तो मैं सोचता कि आज कछु नहीं करिया, आज मोर दिन है
0: हाँ
1: कते।
0: हाँ जी हाँ
1: लेकिन आज मोहित ला मैंने आइटम बनाए भर है, इडली सांबर
0: हाँ
1: चटनी
0: हाँ हाँ हाँ
1: और केक तो सब बना जा रहे हवा,
0: वाह हाँ
1: और बस अब खाए के बारी है। लड़का मन कहते दोपहर में का आइटम हो ही, तो ओकर चिंता
0: माने दिन भर खवाई पियाई के चिंता। बढ़िया
1: तो
0: है।
1: मोरेज बर्थडे है, मोरेज पार्टी है और मोहित ला
0: हाँ
1: करे
0: हाँ तो
1: भर
0: देखा, ये जतका काम बुता लाना एक माता या महतारी है ही कर सकत है, कि सबके खाए पिए के संसो, देख रेख के संसो, पढ़ लड़का उनके पढ़ाई लिखाई के संसो, इला एक महतारी ही कर सकत है।
1: खुशी
0: और
1: लगते लड़का मन खाते मम्मी
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया बना
0: देखा
1: है, तो वही छर हमार
0: देखा
1: बहुत खुशी
0: देखा,
1: लगते वही छर।
0: हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा था आपसे गोट बात करके। और लड़का मन तो उम्मीद करे रहन भाई कि महतारी ये कर दी वो कर दी, कपड़ा धोई, खाना बनाई, रोटी पीठा बनाई, लेकिन
1: हाँ।
0: महतारी जैसे मन कहा चाहते हैं कि लड़का काका करे तो वो मन प्रसन्न हो जाए भाई।
1: जी लड़का मन से यही एक थी आशा रहती कि उमन के रूटीन ठीक
0: हाँ
1: ठाक रही, काबर की ना हमन तो जीवन भर उमन के साथ नहीं रहू ना,
0: हाँ
1: तो मैंने
0: हाँ
1: स्कूल में पूरा पढ़ाई मैंने छूट के झना है, मैंने पूरा कंप्लीट करके आवे,
0: अच्छा
1: ठीक
0: अच्छा
1: टाइम से खाही पानी पीही है
0: हाँ
1: ना, थोड़ कन खेल और मोबाइल ला कम चलाही
0: हाँ
1: सब रहते चिंता।
0: बिल्कुल
1: अगर
0: बिल्कुल
1: एक ठीक भी चीज नहीं हुई ना
0: हाँ
1: कि पानी भी मैंने एक दिन अगर कम पी दिन तो अगर पूरा इफेक्ट पड़ते, ओकर बाद गाड़ी भी हमचला पड़ते और हमन भी सबसे ज्यादा टेंशन रहन
0: जी हाँ जी
1: कि
0: हाँ
1: का होगी,
0: हाँ
1: पेट गर्म
0: हाँ
1: होगी, ये होगी एमटी सके ऐसा।
0: हाँ चला भाई, तो बड़ा अच्छा लगे से गोट
1: तो
0: बात करके नीलम बहनी।
1: मोर छत्तीसगढ़ी में कोशिश करें छत्तीसगढ़ी में बात करे बार, लेकिन थोड़ा
0: हाँ
1: उड़िया भी आ जाते
0: नहीं
1: हो
0: नहीं नहीं बहुत बढ़िया लागत है। और देखा पूरा भारत के विशेषता है कि एक से एक भाषा बोली वाला मन सब एक जगह रहते हैं पूरा दुनिया में, तो हर हमारे देश है ना। तो अब एक उठाओ संगी कर गोठिया थन, तह गीत के आनंद लेबो, फोन लगाए बो, धन्यवाद आपन ल।
1: जी। नमस्कार।
0: हेलो,
1: हाँ तुम्हार गोठ हमार गीत कार्यक्रम।
0: एकदम ठोक्का जगह फोन लगाया संगी, कौन बोला था?
1: राम राम भैया, मैं ग्राम रामेश्वर नगर विकास खंड प्रेम नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से विजय कुमार यादव बोला हूँ भैया।
0: हाँ विजय भाई के स्वागत है कार्यक्रम में, का हाल चाल है भैया सरगुजा डहर के?
1: बढ़िया भैया, ढेरे पानी गिरत है का रही है, पानी तो बहुत ज्यादा गिरत है एकदम।
0: अच्छा हाँ, यहाँ तो मौसम बने हैं लेकिन ओतेक नहीं गिरत है डहर में,
1: कल
0: लेकिन
1: परसों दिन रात में पूरा बहुत मोटा पानी गिरत है भैया, कहते तो मतलब पानी जब गिरत शुरू करते तो एकदम मान चला हमारे लोकल गांव है तो खपरा के छानी तो पूरा एकदम पूरा भर जाते है भैया, इसी
0: हाँ
1: बांगो बांध के पानी भी कोरबा वाला पानी एकदम लबालब भर जाते भैया।
0: हाँ वैसे पानी है तो जरूरी भी तो है विजय भैया है
1: पानी बहुत जरूरी है भैया, तभी तो धान पान हो ही गया या फिर कैसे हो ही
0: हाँ बिन पानी सब सुन कहते हैं का है नहीं।
1: बहुत
0: हाँ
1: दिन के बाद बात हुआ था भैया, लगा था तो लगे लगते अगर भाई कई जे सोता मन जुड़े रहते हैं तो मतलब
0: हाँ
1: 2 साल के बाद बात हुआ थी लगभग
0: ओहो भाई, तो 2 साल के बाद फिर स्वागत है, वैसे तो जुड़े छन समझा रेडियो ले तो।
1: रेडियो से जुड़े हैं भैया,
0: हाँ
1: आजकल
0: हाँ
1: इतना सुविधा कर दिया कि मोबाइलों में हम सुना था ना।
0: हाँ हाँ ओ बहुत बहुत अच्छा सुविधा हुई से, और वही कारण मोबाइल में जब चल गए ऐप के माध्यम से ना, तो आओ आने आने जगह के श्रोतावन, देश भर के श्रोतावन, अब कई जन देश के बाहर
1: हाँ
0: के
1: बाहर बाहर के
0: हाँ
1: जैसे हम सुन था ऑस्ट्रेलिया तो कहाँ कहाँ के मन तो दबन भेज ईमेल
0: हाँ
1: करते तो भैया बहुत अच्छा लगते हम लोग, और
0: हाँ
1: हर सप्ताह फोन मन लगाते भैया, कहा कि मौका हर सुतला मिलना
0: मिलना
1: चाहिए।
0: चाहिए, ठीक कहना है। तो भाई ये अब श्रोतावन के

0: बढ़िया आप बात कहे हैं, और हम उम्मीद
1: हाँ
0: करत हन कि सब जन और पात ल समझें।
1: तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ भैया, जैसे अभी रक्षाबंधन आ गए हैं,
0: हाँ
1: तो जितना भी दीदी भैया हैं सब अपन हिसाब से बढ़िया सबको मोर तरफ से भैया हार्दिक शुभकामनाएं सब झिला, और तुम वाला बड़ा बड़ा बधाई
0: जी
1: रक्षाबंधन को।
0: धन्यवाद धन्यवाद भैया।
1: और जैसे मान के रहा होटल पर में थोड़ा से भी आजकल मिठान वगैरह जैसा भी खरीदते हैं, बोला थोड़ा सा देख हिसाब के अपन खरीदे, अपन घर में बनाए के लेच के दे, वो अच्छा रहते।
0: अच्छा रहता, ठीक कहा था। हाँ,
1: तो सकरों के आगे लग गई, 80 रुपया किलो दिया था भैया, का करें अब त्योहार के
0: लेकिन भाई अब त्योहार विहार में तो मनवाना छे कर देवा कुछ न कुछ पकवान।
1: कर भैया वाला थोड़ा छोड़ नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ
1: नाम लेना चाहता हूँ भैया।
0: हाँ बतावा।
1: मोर भतीजी ने भैया रागनी यादव, रिया यादव, और मोर मैडम के नाम है जानकी यादव।
0: हाँ तो गाना सुनवाबेज करवो अभी आउ श्रोता उनके फोन आ दे विजय भाई, तहा गीत के आनंद लेवो।
1: ठीक है भैया, भैया धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद भैया फोन लगाए।
1: धन्यवाद।
0: हेलो।
2: हाँ कतिया पारा जूना बिलास ले सुशील देवांगन बिलास पुहिया बोलत हम आरबीर भाई, जय राम जय जोहार राम राम।
0: राम राम जय जोहार। और बिलासपुरिया श्रोता के हम स्वागत करत हन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में। बताओ भाई का हाल चाल हैगा?
2: धन्यवाद भैया, अतका कन कहे बर। हाल चाल तो बहुत बढ़िया है भैया,
0: हाँ
2: यदि पानी बरसात मा सुरकुन ठंडा पहुँचे है,
0: हाँ पहुँचे
2: अपने ठंडा लागत है।
0: कैसे?
2: हमार उम्र उम्र ज्यादा हो जाते ठंडा।
0: अच्छा तो आप योगा वाला जवान आदमी है भाई हैं?
2: भैया ये तो आप मन के बल बना से भैया, कब हमार बढ़िया जात हम भैया योगा मगा।
0: बहुत अच्छा है, देखा स्वस्थ रहना पहली आवश्यकता है सुशील भैया।
2: अभी कोटा मा मोरा
0: हाँ
2: योगाचार के
0: हाँ
2: विश्वविद्यालय मा
0: हाँ
2: प्रशस्ति पत्र मिली से,
0: जी जी हाँ
2: और
0: बधाई
2: भारी सम्मान करे मोला।
0: बधाई बधाई। देखा सम्मान तो अपन जगह है, उत्साह वर्धन होते, बाकी
2: हाँ भैया
0: शरीर रहे स्वस्थ रहे यह बहुत आवश्यक है।
2: बहुत जरूरी है भैया, एला ना योगा का
0: हाँ
2: वो कतको उम्र के हो जावे
0: हाँ
2: और को हिम्मत करी ना
0: हाँ हाँ हाँ
2: तो उकर ना हिम्मत और ताकत हर वापस आ जाएगी।
0: आ जाते हैं ना। हाँ तो चला बहुत अच्छा लगी से गोट बात करके, बाकी अब एक गीत के आनंद लिया जाए सुशील भैया।
2: हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद महावीर भाई, मोर
0: धन्यवाद।
2: फोन हर कम से कम 3 महीना में लगा थे।
0: ओहो चला तो अब गीत के आनंद लेवा, और
2: हाँ
0: बेरा बखत इसने फोन करते रहिया, चिट्ठी पत्री भेजते रहा।
2: हाँ भैया राम राम जय जोहार भैया।
0: जय जोहार भैया जय जोहार।

0: हेलो।
1: नमस्कार मावी भाई।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में।
1: जी हाँ, नारवानी चकवाड़ के।
0: हाओ नारवानी भैया, का हाल चाल है बतावा।
1: बहुत बढ़िया चाल है। सावन के डॉक्टर साहब के महीना में।
0: हाओ
1: सावन में तीन चार दिन बचे बाकी।
0: हाँ हाँ,
1: मंदिर में भारी भीड़ दिखत है।
0: भीड़ चला
1: भगवान के मंदिर में।
0: हाओ तो बरसात के मौसम में कैसे रहते खान पान नारवानी भाई?
1: खान पान में घर का ही खाते, वैसे बाबा मना मन बजा के तो चाट वाट कभी कभार खा लेते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: अब क्या है, संसार थोड़ा बहुत खाना पड़ता है।

0: है ना ठीक।
1: बाकी ज्यादा तो नहीं खाते हैं, घर के ही बढ़िया।
0: हाँ वो बहुत अच्छा भी रहते, और खासकर बरसात के मौसम में यथासंभव गर्म ताजा भोजन है ही स्वास्थ्य व ठीक रहते। नहीं
1: हाँ
0: आपके खान पान में काका शामिल करता था घर के खाता
1: बाकी
0: पर?
1: सब मैं सब खाते हैं, बाकी जो भी है हवा
0: हाँ
1: पालक सब्जी वाला नहीं खाके, बाकी तो सब
0: बाकी
1: कई
0: सारा
1: सब्जी
0: खाते।
1: आवा है, करेला
0: हाँ, ठीक।
1: है, भिंडी है, कुंदरू है, ग्वाव है, भरबटी है, हाँ
0: अच्छा,
1: सब खाते हैं बाकी। तो
0: जी जी हाँ
1: ये तो क्या कह जाता है, भारत भूमि है, जन्म भूमि, ये कर्म
0: हाँ
1: भूमि है,
0: हाँ
1: जैसा कर्म का वैसा फल मिली, तो
0: हाँ
1: क्या बस कर्म अच्छा करना चाहिए, कौन वाला
0: जी जी हाँ जी हाँ
1: कौनों के दिल नहीं दुखाना चाहिए, सबके
0: हाँ
1: भला कर तो रहना चाहिए, बस सबसे बढ़िया काम यही है।
0: बहुत सुंदर बात कहे। हाँ,
1: एक अलावा दोनों में बच्चे का है,
0: बच्चे का है तो देखा, और श्रोता मन लाइन में है तो हूमन के दिल नहीं दुखान भाई, ले लेते हूमन
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: को
1: बिल्कुल मत दिखावा। धन्यवाद।
0: फोन। धन्यवाद फोन लगाए हुआ। हेलो
1: हेलो,
0: कौन बोला था संगी?
1: हाँ संगी, मैं रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू बोला तू का
0: हाँ खिलेश भैया के हम स्वागत करत हन कार्यक्रम
1: जी।
0: तुहर
1: धन्यवाद
0: गोठ हमर गीत मा।
1: भैया, राम राम दा, हाल
0: राम राम भैया, का हाल चाल है भैया रानीगांव नगरी के? हाँ
1: चाल बहुत बढ़िया है, और ये बारिश झलक बढ़िया हो थे, अब
0: हाँ
1: बीच में हमार कोती जैसे आप मन कोती बिलासपुर जैसे छत्तीसगढ़
0: हाँ
1: के ऊपरी छोर कहना चाहिए उत्तर क्षेत्र में तो
0: हाँ
1: बहुत पानी गिरत रही से, लेकिन हमार कर छोड़ दे रही से
0: हाँ
1: 15-20 दिन ले नहीं गिर रही से, अब ओकर बाद अब गिरत है तो बहुत ही अच्छा लगा
0: अच्छा
1: थे,
0: था। हाँ
1: ओके
0: हाँ हाँ
1: और खेती किसानी के काम मन बढ़िया हो थे। हाँ
0: बहुत सुंदर भाई, आवश्यक है, खेती तो होना ही जरूरी है, पानी जरूरी है नहीं?
1: आओ, और ये तरफ का है हमारे कर महानदी के उद्गम स्थल है
0: हाँ
1: और कर्णेश्वर धाम है, और तो यहाँ से सब कांवरिया मन है जाते तो बड़ा अच्छा माहौल लगा थे, ये हमारे गांव के लिए सब दूर दूर के मन आए, उड़ीसा बस्तर के मन है,
0: अच्छा
1: सब कांवर यात्रा मन सब बोल बम के नारा लगा लगा जाते तो बहुत ही एकदम धार्मिक माहौल बन गई एकदम
0: बढ़िया
1: से।
0: है,
1: हाँ
0: बढ़िया है। हाओ
1: हाँ हाँ
0: तो चलो भाई बहुत अच्छा है, और जहाँ भी जो भी धार्मिक यात्रा हो चाहे पर्यटन हो, खिलेश भाई
1: हाँ
0: हर
1: हाँ
0: जगह के
1: हाँ
0: साफ सफाई ला ध्यान रखना है, इति तति पन्नी गिलास प्लास्टिक गिलास झन
1: हाँ
0: बगड़ा है ना,
1: हाँ
0: तेला चेत
1: हाँ
0: करना
1: बिल्कुल
0: पड़।
1: बिल्कुल, का साफ सफाई जरूरी है, और जो भी पन्नी हो चाहे कहीं हो, अपन नदियां नरवा प्राकृतिक झरना है, ये सब चीज के साफ सफाई बिल्कुल
0: एकदम
1: जरूरी है।
0: बिल
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल। संगे
1: हाँ
0: संग कई ठ घटना दुर्घटना हो जाते, सेल्फी लेते हैं फोटो खिंचवाते रहते हैं, तो ओहू ले
1: हाँ
0: चेत
1: हाँ
0: करें भाई पानी बरसात
1: हाँ
0: के
1: हाँ ये
0: टाइम
1: पानी
0: में।
1: बरसात में उसनों घलक के जैसे कोई कोई बांध है या
0: हाँ
1: झरना है कहीं ये
0: हाँ
1: देखे के
0: हाँ
1: जाए नाम से जाते, ये
0: हाँ
1: बरसात के दिन में मनोरम
0: हाँ
1: दृश्य भी रहते उसने,
0: रथे रथे भी बिल्कुल
1: और
0: रथे।
1: ओकर चक्कर में का है जो सेल्फी लेते या ये करल अच्छा फोटो वही कहीं करिए, ये कहीं करत करत में
0: है ना हाँ
1: थोड़ा से यही हो जाते
0: हाँ तो खतरा से भाई बचे रहें।
1: खतरा
0: हाँ
1: हो जाते। आओ आओ
0: दूरिया लेत बढ़िया दर्शन करें देखें तो
1: आओ
0: बहुत अच्छा लगा थे गोट बात, लेकिन औ श्रोता मन के फोन टन टन घंटी तो गोठिया
1: हाँ
0: लेते ने कुछ ना करा है
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम
0: ना।
1: राम।
0: राम राम, धन्यवाद फोन लगाए हुआ आप लोग। हेलो
1: हेलो,
0: कौन बोला था संगी?
1: हाँ भगत राम पटेल बोला था मैं, सिंगारवाड़ी घुटकुले भैया ला, राम राम जाते।
0: राम राम भैया, जय जोहार सिंगारवारी के हमर श्रोता के, बताओ भगत भाई का हाल है?
1: बस भैया आवाज है कान तक पहुंची, और गुरतुर भाके
0: हाँ
1: की जिन बोली है ना, और हाँ बस भैया आपके आकाशवाणी तक के पहुंचे थे, और
0: ओ
1: आपकी आवाज हम सुने, हमारा आवाज आप तक के चली, और ये
0: हाँ
1: आवाज जब श्रोता मन तक के जाही तब
0: हाँ
1: हमको लगी कि जिन हमार बात करे कि जिन ढंग है या बात जिन हम करत हैं वो
0: हाँ
1: सार्थक हो गए।
0: वाह भगत भाई, इतना सुंदर आपके गोड बात रहते कि ना सुनत रही ऐसे लगते
1: हाँ भैया यही तो बात है, आकाशवाणी से हम मन ऐसे जुड़े हैं
0: हाँ
1: कि दिन भर कार्यक्रम को सुनत रहीन, अब भैया मन की जिन आवाज है, उखर मन की जिन बताए वाणी, उखर मन की जिन बताए रास्ता है, तेला
0: हाँ
1: अपना करके जिन हमार जिन कार्य है वो बड़ा हम
0: हाँ
1: सुचारू रूप से अपन करत रहीन।
0: हाँ तो अभी का काम बुतम भर दराय है भगत भैया?
1: अब भैया जी हमन कहन ना कि जैसे ही मतलब बरसात है आते वो हरेली तिहार है होते ना,
0: हाँ
1: तहाँ काम बुता तो चलत रहते हमारे जिन खेती के सानी काम है वो तो बंद होना नहीं है, 12 महीना सब्जी भाजी चलत रहते, लेकिन जिन हमारे हरेली तिहार होते तहाँ हमारे जिन छत्तीसगढ़ के तिहार है ना वो मन बिल्कुल धर्रा धर लेते, एक से
0: हाँ
1: बढ़ के एक
0: है
1: तिहार,
0: ना है ना है
1: और
0: ना
1: अब ये आने वाला है रक्षाबंधन और भोजली,
0: हाँ
1: तो भोजली हाँ भोजली के तो बढ़िया रोज सेवा सत्कार चलत है, घर भजन कीर्तन
0: अच्छा
1: चलते छे,
0: बहुत
1: अब वो
0: सुंदर
1: बहनी माई मन रास्ता देखा थे कि कब आई भैया है और कब
0: हाँ
1: हम राखी पहनाई नहीं से कही के,
0: ठीक
2: तो लगे हम भैया कि अब तिहार मन के जेन

0: है, हुमन का मनाना है, और अपन जिन काम होता है हुमन लग करना है।
1: देखा भगत भैया, जतका तिहार हैं, पर्व हैं, परंपरा हैं, एवं इतका सुंदर व्यवस्था है कि भाई हमार आपसी प्रेम भाईचारा बने रहे। और देखा भोजली पर्व भी पूरा प्रकृति से जुड़े तिहार है।
0: बहुत सही बात भैया, जैसे हम कहते ना कि कोई तिहार बार आते तो खर्चा ज्यादा होते, लेकिन ओकर ले ज्यादा हम लोग तिहार बार संदेश घलो देते, एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप भी कराते, जेखर से हमारे जिन भाईचारा ही रिश्ता है वो अटूट बन जाते
1: बन जाते हैं। है ना, बहुत सुंदर बात कहे आप। तो एक श्रोता कर गोठिया था, गीत सुनवा था आप भगत भाई।
0: तो बिल्कुल भैया, आप मन करा जिन आज बात हुई से ओकर खातिर मैं आपला और आपके माध्यम से संगी मल्ला और आकाशवाणी परिवार ला गाड़ा गाड़ा बधाई देते हैं। जय जवाहर, राम राम और सब तिहार की गाड़ा गाड़ा बधाई जाते।
1: धन्यवाद भैया। हेलो
2: हेलो,
1: कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत में फोन लगाया है भाई, कौन बोला था?
2: चिरमिरी कुरा से आप कालदी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ ले आपका निमित श्रोता इंद्रभान सिंह बोला था।
1: हाँ बताओ भैया, क्या हाल चाल है चिरमिरी डहर के?
2: दादा ठीक है, तो वही मौसम बनी से बादल वादल करते है, पानी वानी खूब गिरी से देना है, और उसके बाद यही मतलब तो थोड़ा सा धूप भी करी के बाद फिर आज बादल करते है उमस टाइप के बनी से देना।
1: अभी मौसम हर जगह इंद्रभान भाई उसने चलत है नहीं?
2: हाँ दादा, और ये तो मौसम में उलट पुलट होते हैं, लेकिन ये में मौसम में ज्यादा तो वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम और छोटे बच्चे मन का तबियत खराब होते हैं। तो इस घर के आस पास जितना भी है दादा, वो घास कूचे नंदी में साफ सफाई और पानी जमा न रहने दे, वो खूब डेंगू मच्छर, वो मलेरिया और टाइफाइड वाले मच्छर पैदा होते हैं। तो साफ सफाई जरूरी है दादा, ये कहा की ये सब बीमारी का नली साफ होना चाहिए,
1: है ना? है ना,
2: वहाँ पर मक्खी वाला दवाई पाउडर जो छिड़काव हो करना चाहिए, घर में भी मच्छर आते तो धुआं भी करना चाहिए, तो उससे कहा कि मच्छर उच्छर से हमारे राहत मिलते, नहीं तो एकदम कार्पे से ज्यादा एकदम जलन होते।
1: बहुत सुंदर उपचार बताया है, संगे संग आपने कहा कि साफ सफाई है जरूरी है इंद्रभान भैया, है ना? चाहे झाड़ झंखाड़ हो, चाहे बगीचा हो, चाहे घर के कमरा अंदर हो, हर जगह की स्वच्छता जाओ सर।
2: जैसे बगान में भी बहुत ही, वहाँ भी मच्छर चमकीला वाला मच्छर बहुत जम के काटते हैं, वो भी काट देते हैं एकदम, वो सब मलेरिया फलेरिया भी मच्छर रहते हैं।
1: रहा तो इंद्रभान भाई, मच्छर ले बांचे वा आप का का उपाय करता?
2: मच्छर ले बांचे ले दादा, सबसे पहले तो हमके बढ़िया से वहाँ पर तो जैसे की जैसे कोई मन लगाते है का वो दवाई लगाते है, धुआं हुआ करते हैं, तो हम वही ज्यादातर अगरबत्ती जला देती और एक लिक्विड आते तो मच्छर उच्छर नहीं काटे।
1: अच्छा,
2: और कपड़ा भी पहनना चाहिए मोटा वाला की ताकि मच्छर नहीं काटे।
1: मच्छरदानी नहीं लगावा? बाकी मच्छरदानी अभी ना एक बड़ा अच्छा उपाय है, तो उसमें का है धुआं होए
2: तो मच्छरदानी भी बढ़िया से लगे तो उसमें मच्छर न घुसे।
1: तब एक गीत के आनंद ले था इंद्रभान भाई।
2: हाँ दादा, फोन शामिल कर धन्यवाद, और तुहर घोट हमर गीत में तुहर मन को प्रस्तुति दादा बहुत बढ़िया रहती।
1: धन्यवाद भैया, आप फोन लगाया थे करवा।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: फोन लगा के कहाँ गंवा गए है जी?
1: अरे भैया, निशान में रही से।
0: या कौन बोला था भैया, नाम बतावा।
1: मैं नानघाट कातल बोल ले बोला था भैया, भाग सी राजपूतगढ़।
0: हाँ, क्या हाल चाल है भैया?
1: और सब बढ़िया भैया? ये देख, खेती बाड़ी के काम बूटा चला थेगा।
0: हाँ, तो पानी तेरे हो से पर्याप्त हो गया कि अभी?
1: पानी पर्याप्त है भैया, वो
0: हाँ
1: तो आसो सामान जब ले लगे तब ले, छोड़ में नहीं करत, पानी रोजे गिरत ऐसा
0: हाँ
1: नहीं
0: ठीक है ठीक है, जरूरी भी है रे भाई, है ना।
1: है। जरूरी है। हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो अभी तो धाने धान ही लगा तो ही भाग सिंह भैया।
1: हाँ धान डले भैया, पूरा मेड़ मा पूरा राहेल लगे चारों मुड़ा। हाँ
0: अच्छा, तो लगाए हवा?
1: चला थे लगाई उम लग गए खला।
0: हाँ, बहुत बढ़िया।
1: हाँ
0: ता आकाशवाणी बिलासपुर सुनना होते? हाँ
1: हाँ बिल्कुल भैया, सुनत रही था हम ट्रांजिस्टर। मोर में कम से कम 20 साल हो गए भैया, 20-25 साल।
0: चला थे बढ़िया।
1: हाँ बढ़िया चला थे मोर।
0: वाह भाई,
1: और आजकल तो मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनता भैया बढ़िया।
0: हाँ, वो तो और सुविधा है ना। हाँ
1: हाँ, हमारे यहाँ पिताजी नहीं,
0: हाँ
1: रेडियो बहुत शौकीन है, वो सुनत रही से तो
0: अच्छा,
1: बीच में मैं थोड़ा सुनाई काम कर दे रहे हैं। जब ले मोबाइल ऐप चालू हुई नहीं भैया,
0: हाँ
1: तब ले ज्यादा उस सुने में परेशानी नहीं कहे मतलब।
0: हाँ कहूँ मर ले सुन ले वाह भाव।
1: हाँ कहूँ मैं ले सुन ले, और सुविधा है
0: हाँ, तो बने सफा सुनाते
1: खे।
0: हैं।
1: हाँ एकदम सफा सुनाते, और खेत में घला काम करत करत बढ़िया सुन लेते भैया कार्यक्रम ला।
0: बहुत बढ़िया।
1: हाँ
0: ठीक, तो एक उठाऊ श्रोता बनकर गोठिया थन भाग सिंह भाई,
1: भैया हाँ,
0: तहां गीत आप ला सुनवाबो, फोन लगाए बा, धन्यवाद आप मन के। हेलो,
1: धन्यवाद भैया धन्यवाद।
0: कौन
1: हेलो,
0: बोला था भाई?
1: जयराम भैया। हाँ
0: जयराम भैया।
1: बरगाव भैया बोला था उसका,
0: हाओ
1: रोशन देवांगन बोला था
0: रोशन
1: उसका।
0: देवांगन भैया के हम स्वागत करथन कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत में।
1: हाँ धन्यवाद भैया।
0: हाँ, का हाल चाल है रोशन भैया? हाँ
1: अब हाल चाल ठीक है भैया, श्रोता सम्मेलन में गए रहन होइस भिलाई में थी। हाँ
0: हाँ
1: तो वहाँ ला डोंगरगढ़ चल दे रहे हैं,
0: हाँ अच्छा, वाह
1: घूम घाम के आए भैया, कल आए 8 बजे।
0: वाह, तो
1: हाँ
0: बढ़िया श्रोता सम्मेलन हुई, कार्यक्रम पूरा संपन्न। अच्छा
1: हाँ बढ़िया हुई भैया, मस्त हुई। जितना भी श्रोता मन से फोन उन्होंने को उठाया, सबसे मन से आपसी मुलाकात हुई बढ़िया,
0: हाँ,
1: और सबसे मिल के अच्छा लगी इसका।
0: बहुत अच्छा लागते एक ठे सम्मेलन हो जाते, तो का है
1: हाँ
0: प्रत्यक्ष मुलाकात के अलग मजा है। अब बाकी फोन में रेडियो में तो सुनते रहता नहीं।
1: हाँ हाँ भैया हाँ हाँ
0: अब बिलाईगढ़ तरफ पानी बरसात कैसे है?
1: पानी तो अब अभी नहीं गिरा थे, काल तो थोड़ थोड़ रिमझिम रिमझिम थोड़ थोड़ गिरा रही इसका दे,
0: हाँ
1: और अभी तो नहीं गिरे है, लेकिन मौसम तो हवाए पानी गिरे के
0: हाँ मौसम बने हैं, और
1: बने मौसम।
0: हाँ
1: हाँ
0: मौसम विभाग घलो कहे कि पानी गिर ही अंदर है, अंदेशा कहे।
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: अभी पानी बरसात के दिन में काम बूता बदल जाते कि ठीक ठाक चलते उसने?
1: नहीं भैया, हमन के सब दिन चलते काम, पानी बरसात
0: हाँ
1: गर्मी कोई मतलब नहीं है, अपन अपन घर
0: हाँ
1: में लगे हाथ करगा है,
0: हाँ हाँ हाँ
1: और जतका मन लगे उत्कार करा था, पानी पानी होने से
0: पानी
1: कोई
0: से
1: है नहीं हो
0: तो
1: माँ,
0: मैं दिक्कत नहीं हुए कदे। हाँ हाँ
1: तो नहीं नहीं कब होने दिक्कत कुछ नहीं
0: हाँ
1: हुआ।
0: हाँ ठीक,
1: हाँ।
0: चलो अच्छा लगा थे रोशन भाई गोट बात करके। अगली जन कराओ गोठिया था गीत ला सुनवा वो तो। हाँ
1: हाँ भैया हाँ भैया धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: भैया।
0: धन्यवाद भाई, फोन लगाए बा। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ कौन बोला था भाई?
1: मैं लौटना पारल मेघनाथ पटेल बोला था भैया,
0: हाँ
1: नमस्कार।
0: नमस्कार पटेल जी, बताओ।
1: महावीर भैया नमस्कार,
0: नमस्कार नमस्कार,
1: बहुत
0: बताओ।
1: दिन बाद भेंट हो
0: हाओ हाओ
1: है नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छा लागते, बहुत खुशी
1: हाँ
0: होते, गोट बात हो जाते, मुलाकात हो जाते ना।
1: हाँ आनंद आ जाते ना,
0: हाँ
1: श्रोता मन कर बात के तहु मतलब भी आनंद आ जाते है नी,
0: बिल्कुल
1: और
0: हम।
1: वहाँ मतलब भी आनंद आ जाते है, हमारे उद्घोषक भाई सब मन कर भेंट हो
0: हाँ,
1: जाते तो।
0: तो जत का खुशी आप मन होते उसने हम लागते भाई, जत का
1: हाँ
0: श्रोता मन कर मुलाकात या बातचीत हो जाते तो बड़ा अच्छा लागते, निक लागते।
1: अच्छा लगते। हाँ
0: तो काका भी कैसे
1: हाँ
0: दिनचर्या चलत है, काम बुता कैसे चलत है पटेल भैया?
1: अबे देव कपड़ा सिले चलत है,
0: हाँ
1: आ उखर बाद रक्षाबंधन त्योहार मनाबो भैया, तो
0: हाओ, तिहार से
1: दे
0: रख
1: कपड़ा मन थोड़ा भराए हैं अभी सिलाई है। हाँ
0: तो भाई देखा, तिहार विहार वो जन जन दे हैं तेला तो ना चेत करके पहली सिली देवो भाई आप।
1: हाँ वही तो पहली सील दे वाला।
0: हाँ
1: हाँ
0: और कि जतका लड़का मन के बहनी मन के सबके मन रहते कि नवा नवा पहनी करके। हाँ
1: है तो हाँ, और काहे जो अभी ना सीजन चला थे, काहे सर्दी बुखार तो सबो कहे जाते भैया कि ना
0: हाँ
1: सचेत खाना पीना थोड़ा देख के खाओ।

0: नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: मच्छर भी बहुत पैदा हो गए भैया, तो ओकर से भी बचना चाहिए। हाँ,
1: हाँ
0: तो रेडियो के माध्यम से कहा था सबोला
1: बिल्कुल, आप
0: नहीं।
1: जो कहा था तेला सब सुनत हैं,
0: हाँ हाँ
1: और खान पान में भी सावधानी आवश्यक है, 12 महीना ये बरसात के सीजन में और ज़्यादा।
0: आओ जाता करके।
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ है ना।
0: हाँ अभी मैं तो हॉस्पिटल गए रहे ना, कॉलेज गए रहे महू। हाँ,
1: हाँ
0: तो भारी भीड़ से घाव ज्यादा होते, गोड़ मन में पानी चलते हुई भैया
1: हो
0: हानि,
1: है ना वही। हाँ
0: और तबियतों खराब होते कई जने के। हाँ
1: बिल्कुल, तो सावधानी जरूरी है, और
0: हाँ
1: आपके गोट बात ला बाकी श्रोता मन भी सुना थे भाई, तो भाई सुना और गुना घलो।
0: हाँ
1: तब एक गीत के आनंद लिया जाए मेघनाथ भाई,
0: हाँ ठीक है भैया,
1: है
0: सब
1: ना
0: समय देना चाहिए
1: है ना।
0: नहीं।
1: हाँ गीत सुना था ना,
0: हाँ
1: फोन लगाए पर
0: ठीक है भाई,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: आपला।

और यही गीत के संगे संग कार्यक्रम तुहर गोठ हमारे गीत के आज के अंक ही सिरावत हवे। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग बर हमारे संग रहीन है सौरभ केसरवानी भाई मन। आज के कार्यक्रम आप मन ला कैसे लागिस?

चिट्ठी पत्री भेजिया, ईमेल में भेजिया, हमला अगोरा रही। और देवा कार्यक्रम के ये अंक ले विदा। अपन संगी महावीर बरगाला, जय जोहार।

कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी महावीर बरगाह की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 10:31 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद, और आप सभी की फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं तेरे नाम फिल्म का ये गीत उदित नारायण की आवाज़ में। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने, और इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु डोली और पूर्वेश साहू ने। भाटापारा से बच कामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सियाराम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, अनीशा। रायपुर से हमारे साथी हैं नीलू मेघ और नीलम। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, हाव्या रजक और टानिया रजक ने। लुतरा खमरिया से हमारे साथी हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल। शांतिनगर भाटापारा से इस गीत को सुनना चाहा है रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज, अल्फैज खान, सादिया खान, हजीरुन निशा। बिल्हा से शेख नासिर, महजबीन बानो। नेहरू और भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू। मोहनपारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक साहू, उमा देवी साहू। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूर जहां, डब्लू नूर जहां, वसीम नूर जहां, वली उल्ला नूर जहां। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, नीरज रावत। सुभाष वार्ड से अमृता यादव, पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, प्रेरणा डिम्पी यादव। हदबन नेवधा से दुलारी यादव, प्रियंका यादव, कुमारी प्रीति यादव, उमेश्वर यादव, सुनती यादव। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। हटरी चौक बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी देवांगन, पिंकी देवांगन और जया रानी। मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया। भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना तेरे नाम फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में। श्रोताओं, महिला सभा है तो कृपया ये सूचना सुनिए, फ़ोन करिए। गीत सुने कार्यक्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भवः।

आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं बातों बातों में, क्या कहना जब वी मीट। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266-592। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता साथियों ने, नैला बोरसरा से दुर्गा प्रसाद तिवारी, हेमदेव तिवारी, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी तिवारी, उमाबाई तिवारी, अंजुलता तिवारी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी और रौनक सेन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, बेदबाई वर्मा, सुमित्रा, योगिता, फलेश्वरी वर्मा। ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार कंवर। शांति नगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी कोरम, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। भूरसुदा से गजेंद्र सेन, चिराग सेन, संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश सेन, नेहा सेन, भगवानी सेन। शांतिनगर भाटापारा से मिलाव दास, कुलदीप, संदोष दास, संदीप दास, अजीत दास कुलदीप, बिरझा, संजना, लक्की। हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। डोंगर गांव से हमारे साथी हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। जांजगीर महेंदा से रामनारायण कश्यप, कविता देवी कश्यप, कुसुम लता कश्यप, खुशबू कुमारी कश्यप। बंगला मटिया बालौत से हमें फरमाइश भेजी है शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे ने। बेलगहना शक्ति बेहरा से श्याम शंकर, काशीपुरी, बाबा, विजय, रागनी, गीता देवी, कैलाश, चंद्रवती, कुसुम काशीपुरी, राधा पड़वार। औवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू, मुनीषा साहू। कोरबी बेलतरा से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित, सोमू, मानस राज। और बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशि कांता प्रजापति। इस फिल्म का नाम है ताल। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों से सजाया है ए आर रहमान ने। आवाज़ें सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की है।

Mm-hmm.

सुनो सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण

0: देखा है। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कृपया महिला सभा हेतु ये सूचना सुनिए। आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं महिला सभा में। आपकी फरमाइश हमें मेल कीजिए mahilasabha@gmail.com में। महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार और गुरुवार शाम 5:35 पर। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा से संबंधित ये सूचना सुनिए। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोताओं, हमें 0775226592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपकी फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। लीजिए, अब पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
4: स्वीकार कीजिए नमस्कार उमाशंकर पांडे का। लीजिए सुनिए अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था की जानकारी। दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सावन महोत्सव अर्थात इस वर्ष के सावन माह का आज चौथा और अंतिम सोमवार है। इस अवसर पर बड़े सुबह से ही मंदिरों में सड़कों में काफी चहल पहल है। सड़कों में चलने वालों में अधिकांश कोई शिव मंदिर जा रहा है या कोई मंदिर से वापस आ रहा है। प्रायः हर मंदिरों के साथ साथ तमाम घरों में भी तमाम प्रकार से भगवान रुद्र जी का अभिषेक चल रहा है। लोगों में बहुत अधिक उत्साह है। सभी भक्तों से अनुरोध है, उत्साह के साथ साथ अपनी और दूसरों की भी सुरक्षा और सावधानी का पूरा पूरा ध्यान रखें। सड़क के किनारे चलें। मंदिर आने वाले भक्त अपने वाहन सड़क के किनारे व्यवस्थित रखें। सभी वाहन चालक आज सड़कों में विशेष सावधानी के साथ धीरे चलें। मित्रों, विगत रात बेलपान से आया कांवड़ यात्रियों का भगवा सैलाब जो रतनपुर मां महामाया धाम के धर्मशाला में ठहरा था, आज सभी कांवड़ यात्री बोल बम के जय घोष के साथ साथ बूढ़ा महादेव मंदिर के लिए कूच कर चुके हैं। इस कांवड़ यात्रा में लगभग 10,000 से 15,000 कांवड़ यात्रियों के शामिल होने का आयोजन समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है। अर्थात रतनपुर की पूरी सड़क में सिर्फ कांवड़ यात्रियों की धारा दिखाई देगी। सभी कांवड़ यात्रियों से पुनः अनुरोध है, ध्यान रखें आप मुख्य सड़क पर हैं जहां छोटे बड़े तमाम प्रकार के वाहन भी चल रहे हैं, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सड़क के एक किनारे चलें और फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे वाहनों के आने पर इसे तत्काल साइड देवें। सभी वाहन चालक यहां पर बिल्कुल मंद गति में चलें। सभी कांवड़ यात्री जल अभिषेक पश्चात विभिन्न वाहनों से चारों दिशाओं में अपने अपने घर भी जाएंगे। उस समय विशेष सावधानी सतर्कता बरतें क्योंकि अधिकांश लोग दो पहिया वाहन में होंगे। दो पहिया में तीन सवारी ना चले, हेलमेट अवश्य पहने। साथ ही कांवड़ यात्रियों के साथ साथ सभी मंदिर आने जाने वाले भक्तों से निवेदन है, ट्रैक्टर पिकअप मेटाडोर या माल वाहक ऑटो में कभी भी यात्रा न करें, यह घातक है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
3: कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम पेश कर रहे हैं उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार आनंद बख्शी है, संगीतकार विजू शाह है, फिल्म का नाम है गुप्त और पसंद आप सभी की। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम आसिफ, नईम राजा। दतरेंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर।

तिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरत सुजला ज्योति ओरियांश ठाकुर की। बनिया पारा धमतरी से हमें फरमाइश भेजी है रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद और समस्त माखीजा परिवार में। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। रुआ बांदा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत, वीरेंद्र वृजकांत सारथी। बेलर गांव से हमारे साथी हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु, अंकित देवांगन। धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। और हथनी पारा भाटापारा से दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण, दुलारी वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अभी आप सुन रहे थे गुप्त फिल्म का गीत उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
0: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
1: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
1: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
0: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
0: राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
0: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च

0: में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा

0: हाँ हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर, आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था, वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
2: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में

0: पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत

0: बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
1: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुलफाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं है।

0: ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
1: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
0: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
2: Marvelous.
1: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ऐसी मूर्ति तो मैंने
6: वाओ, वंडरफुल।
0: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
1: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
0: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
1: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
0: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
3: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
4: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
1: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
0: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
2: ग्रेट, मार्वेलस।
4: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
2: वंडरफुल।
8: हाँ
9: हाँ हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है। यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
0: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
0: कहीं ऐसा ना हो कि
1: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास, भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा से संबंधित ये सूचना सुनिए। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह। श्रोता हमें 07752266592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। ये सूचना यही समाप्त हुई। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत, फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है ललित सेन का, एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है दिलीप वर्मन का, एल्बम का नाम है रात।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार सुनिए आकाशवाणी रायपुर से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगले साल मार्च तक 5,00,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले साल मार्च तक 5,00,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम के समापन समारोह में कही।

0: उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 95,000 घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निर्माण श्रमिकों के 200 मेधावी बच्चों का सम्मान करेंगे। वहीं 18 श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 39,67,00,000 रुपए की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे। इस राशि से श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल से ठीक हो जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। यह स्थिति अगले 6 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मुंगेली जिले के ग्राम पंडरभट्टा में रविवार को खेत में काम करने के बाद लौट रही 46 वर्षीय महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खोंगापानी नगर पंचायत में स्थित बड़ा तालाब में नहाने गए 3 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। बच्चों को डूबता देख एक स्थानीय युवक ने डूब रहे बच्चों में से 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और उसका पता नहीं चल सका है। आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में विशेष पूजन और रुद्राभिषेक किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकास खंड के 30 गांव में आज आयुष्मान कैंप लगाया गया है, जहां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ग्रामीण अपनी सुविधा के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान 186 टीमें तैनात रहेंगी। सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कल संपन्न हो गई। इसके माध्यम से 464 तीर्थ यात्रियों ने 10 जत्थों में यात्रा की। यात्रा 20 जून को आरंभ हुई थी और अंतिम जत्थे के गंगटोक पहुंचने के साथ ही संपन्न हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 90वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगले साल मार्च तक 5,00,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम को 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें

0: भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम और आप मिलकर याद करेंगे कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है बैराग।

साथियों, अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
3: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है इंदीवर, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत सुनिए जिसे लिखा है अनजान ने, आवाज है किशोर कुमार की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशम।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे अल्लाह दिना बदली दुनिया के आया नया।
3: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कलाकार इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
0: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

धर्मात्मा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदिवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है वो पढ़ के सुना देते हैं, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। आपने उसे पढ़ा भी है, बहुत सारी बातें आपने हमारे विषय के संदर्भ में लिखी है। पहले आपको इबारत पढ़ के सुना देते हैं। इबारत ये है कि एक

सवाल एक जवाब, हर सवाल के जवाब से उठता है एक सवाल और चलता रहता है ये सवालों का सिलसिला। दुनिया जब सवाल करती है तो लगता है क्या जवाब दें, दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे कहा, अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगे? उसने कहा, मैं तुम्ही से पूछती हूं कि कौन हो तुम, कौन हो, ख्वाब हो या हकीकत हो। सवालों का सिलसिला एक जगह आकर ठहर जाता है, पर तभी उसने चांद से पूछ लिया, तुम छुपे हो कहाँ? चांद ने कहा, ये तो कहो कौन हो तुम। सवाल का जवाब मालूम ना हो तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो है, तभी तो हम कहते हैं ये दिल की बाजी है, हम जीत ही लेंगे, खेल को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सत्यता तो ये है कि ये सवाल और ये जवाब एक मरीचिका की तरह हमारे मन में बने रहने चाहिए। तो दिन में 1 बजे, यानी कि इस वक्त अभी थोड़ी देर में, सवालों का जो जवाब है वो आप जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। एक हमारी साथी की ये बात की कि मन में छिपे सवालों को न पूछने से असमंजस और गलतफहमियां बढ़ती हैं, जिससे मन अशांत रहता है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। खुलकर बात करने से स्पष्टता आती है, मन का बोझ कम होता है और आपसी विश्वास मजबूत होता है। संवाद न करने से, बातों को मन में रखने से दूसरों के इरादों को लेकर गलत राय बन जाती है। सही समय पर सवाल पूछने से भ्रम दूर हो जाते हैं। पारदर्शिता से रिश्तों में अपनापन और नजदीकियां बढ़ती है। छोटे बच्चे कुछ सवाल कौतूहलवश या जिज्ञासा के लिए करते हैं। सही समय पर बच्चों को सही सवाल का जवाब देना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात हमारे इन साथी ने लिखी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों ने अगर कोई सवाल किया तो हमें लगता है बच्चों की बातों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उतना ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बहुत सारी बातों को उस वक्त सीख रहा होता है, और यही कारण होता है कि उसके मन में सवालों का एक उबाल सा होता है। अगर उन सवालों का सही जवाब ना मिले तो बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इसलिए बच्चों के सवालों का सही जवाब देना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम गीत सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गीत है ये ससुराल फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ है, संगीत शंकर जयकिशन का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए हमें।

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है जो जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है। और अब हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किसी से कोई सवाल किया है और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब ही तो जिंदगी की आधी उलझन और आधा सुकून है। सवाल तलाश की आग है और जवाब उस आग पर ठहरा हुआ पानी है। हमें कभी कभी लगता है सवाल या निमृत तृष्णा है, मगर वो भी तो एक दृष्टि भ्रम है। सवाल ही तो जिज्ञासा या मनुष्य की चेतना बढ़ाता है। जवाब यानी अनुभूति उस पर गहरी शांति देकर सवाल को जीत लेता है। जीवन का सफर यूं ही चलता रहे, यही रूह का असली बहाव है। और एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता। एक गाना भी है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता मेरे प्यार का हिसाब, इस तरह के एक गाने का इन्होंने जिक्र किया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज की इबारत ने हमारा दिल छू लिया, सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, पर हम भी कहते हैं कि दिल की बाजी है, जीत ही लेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहू बेगम फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। लता जी की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। संगीत किसका है ये बताइए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतजार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाजें हेमंत कुमार की, कैफी आजमी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। हमने आपसे पूछा कि क्या किसी से आपने कोई सवाल किया और अभी तक आप उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई आप व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिनके जवाब देने का जो अंदाज है वो आपको बड़ा पसंद आता है, और वो जवाब अंदाज जो है वो कैसा है उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइएगा। चलिए, अनुपमा फिल्म का गाना सुनिए।

धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना। एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए। सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आंखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो, तब इंसान अपने को बहुत असहज महसूस करता है। लोग अक्सर अपनी उत्सुकता या नियंत्रण की चाहत में सीमाओं को भूल जाते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और कोई जरूरी भी नहीं कि हर कोई आपके सवाल के लिए तैयार बैठा हो। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब की इस पहेली ने मुझे मेरी बेटी की याद आई। अभी वह 2 साल की है और 15 अगस्त को उसका बर्थडे था। वो मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती है कि इसका जवाब नहीं दे पाता हूं मैं, कभी कभी जवाब दे भी पाता हूं। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए। मेरे पापा रात को सोए और सुबह जागे ही नहीं, ये सवाल हम पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। शिकारी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है और अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गाना।

फारूक कैसर का लिखा और जीएस कोहली का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रही है कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलट कर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी? एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी? प्रश्नों का ये भंवर थमता ही नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये जरूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, कमजोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशीय पत्र का हवाला दिया तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं। आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है, ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, जानेसार अख्तर के बोल, एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है। तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज दिन में कम से कम 5, 6, 10 दफे बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फिलहाल बादलों का कब्जा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल पर चुप रहना जरूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी खत्म नहीं होते। एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम बाहर उत्तर खोजते हैं जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर, किसी का सवाल सुनकर, पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियां आ जाती, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब तीन देवियां फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, SD बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला जिंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाजा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूँ तक पहुँचते पहुँचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था।

कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए, धन्यवाद आपका। और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, भरत व्यास के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हो जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है। ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नहीं

ये देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन, पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है। इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहाँ कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई ना कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ से, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम इस फिल्म का गाना आपने सुना। संगीत खय्याम का एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखती हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, भारतीय नारी के 16 श्रृंगारों में पायल यानी पाजेब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कविगण नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन में पायल का वर्णन आलंकारिक और कोमल कांत शब्दावली में करते हैं। पायल की झनकार न सिर्फ वातावरण को अनुरागमय कर देती है, बल्कि मधुरता और स्नेह से भर देती है। हमसे

भारतीय संस्कृति में पायल की रुंझुन ध्वनि में नारी के सौंदर्य के साथ उसकी सरलता, लज्जा और गरिमा का भी समन्वय दिखाई देता है। पायल की मधुर झंकार प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं को मर्यादित रूप में अभिव्यक्त करती है। नायिका के चरणों की गति की तीव्रता से आंदोलित होती पायल प्रिय मिलन की आशा तो जगाती है, किंतु लोकलाज से विचलित भी करती है। ऐसी भावना तो ब्रजवासिनी राधा के मन में भी उठती होगी।

0: पायल की छम छम वातावरण में ऐसी मधुरता भर देती है मानो प्रकृति भी स्वयं उस सौंदर्य का स्वागत कर रही हो। बिना कुछ बोले पायल की झंकार ही प्रियतम को अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। पायल की रुनझुन हृदय से हृदय के बीच का पत्राचार ही तो है।
1: छम

पायल नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पायल सौंदर्य और प्रेम को कलात्मक एवं सौम्य रूप में अभिव्यक्त करता है। तभी तो कवियों ने इसकी रुंझुन की तुलना वीणा के मधुर तानों से की है और इसे हृदय की मौन भाषा की भी संज्ञा दी है। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
1: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
2: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
4: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
0: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में

0: करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
1: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अपीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है।

कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है जिंदगी।

0: नाचे ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे
1: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में गीतकार है हसरत जयपुरी संगीत है सचिन देव बर्मन का फिल्म का नाम है जिद्दी

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी। मिलो जो अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगा

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अगले गीत में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, तर्ज है रवि की, फिल्म का नाम है शहनाई।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खयाम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

0: क्या करे क्या करे क्या करे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। चंचल जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है। और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है, इसलिए डरना नहीं है। और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है?

0: वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे, लेकिन
1: और हमारे
0: फिलहाल
1: सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे
0: हाँ
1: साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
0: हाँ बिल्कुल। तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट, इसका
1: इसका
0: पहला
1: पहला
0: भाग।
1: भाग।
0: जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है।
0: हाँ
1: और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना
0: हाँ
1: कैसा हुआ करता था।
0: हाँ
1: लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना, तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की,
0: जी
1: रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
0: बिल्कुल। और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी
1: जी,
0: चर्चा भी कर ली है।
1: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये हैं पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि चर्चित रेसिपीज हैं,
0: हाँ,
1: उनकी बात।
0: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: देखिए, यहां मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है, रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है। तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं, और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहां उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब भी मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो, लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
0: बड़ा मुलायम मुलायम सा
1: हाँ
0: और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है।
1: जी,
0: अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और
1: और
0: फिर
1: भाई
0: खा
1: आपको
0: लीजिए।
1: मिठास लेनी है, आपको लगता है कि भाई इन इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
0: बिल्कुल।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या।
1: जी
0: और कुछ बातें या कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे
1: हाँ
0: कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग, आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है।

0: तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
1: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड तीन रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
2: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
1: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ।
2: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
1: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
2: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
1: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
2: अरे वो यहां नहीं है क्या?
1: नहीं नहीं।
2: ओह, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा एक हफ्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
1: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
3: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
1: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
2: आप ही किशोर जी हैं।
1: जी
2: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
1: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
1: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं? हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ।

0: हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: रखिए। जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहां जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
0: क्या?
1: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
0: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? खैर, चार दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी?
1: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूँ और आसानी से ना नहीं कह सकता हूँ। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: हाँ बोलिए।
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
0: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा यह दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: जी,
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
0: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता

0: भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए

यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे कहानी छः आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती हैं। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपनी मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए। और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या

0: बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरें और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया
1: ये
0: है।
1: सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी मजबूती बन जाती है।
0: हाँ।
1: और जब भी लगे कि मुश्किल ज़्यादा भारी हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत
0: हाँ
1: बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज़ आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने
0: बहुत
1: छोटे
0: छोटे
1: लगने।
0: से हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने
1: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब
0: जी।
1: आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
0: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को
1: और
0: मुश्किल
1: बड़ा
0: को
1: बना
0: बहुत
1: लेते
0: बड़ा
1: हैं,
0: बना
1: और
0: देते हैं।
1: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना
0: तो
1: होगा।
0: हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सज़ा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की ज़रूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
1: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी
0: हाँ
1: मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो
0: जी
1: आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे,
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो
0: और
1: जाता है।
0: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं हैं। तो ज़रूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं आपके, चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं मैं हूं ना साथ में,
1: बिल्कुल
0: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
1: बिल्कुल,
0: है
1: हमें संबल देता है और
0: जी
1: हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा।
0: जी
1: और घबराने के बजाय थोड़ी सी जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाएं और बूझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, हर मुश्किल के बाद 2 चीज़ें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। और
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे,
0: जी
1: लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते
0: हाँ
1: हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीज़ों का असर कम होगा।
0: बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: और खता।
1: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
2: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है।

0: मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है। निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
1: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं,
0: बिल्कुल महान उन्होंने व्यक्ति जो हुए हैं,
1: उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
0: हाँ, एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
1: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे न हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शैलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है, और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है
1: जरा
0: कभी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी वही बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धुरत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
1: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ। तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है।
0: क्या
1: ये माध्यम से,
0: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है। और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल इसमें, ये चीजें डाल दो। ये कितना खतरनाक लग रहा है, यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
1: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
0: लेकिन बतौर विशेषज्ञ आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
1: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो इस पर से आप समझ
0: ज्यादा है।
1: यस
0: जी जी।
1: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है, उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है। कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन

0: लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए. कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटेक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया, लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा. जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते.
1: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
0: हाँ,
1: पर थोड़ा संभाल के.
0: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा संभाल
1: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं.
0: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं,
1: जी
0: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है.
1: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा.
0: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
1: जी. आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा.
0: बिल्कुल
1: ना, तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए. मैं कर दूं?
0: आप कर दीजिए.
1: हम सब उस्ताद हैं. फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं.
0: हाँ.
1: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम.

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग. आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है. मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है. और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है. और जब बाल में टक्कल, बालनेस दिखाई देता है, तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है.
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता
1: तो ये
0: है.
1: बालनेस कभी दिखाई देता है? 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है.
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई.
1: बिल्कुल. और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं. तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है.
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे
1: यस
0: पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया. मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है. लेकिन उससे ज़्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है. मैं नहीं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके, तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए.
0: बिल्कुल.
1: बिल्कुल.
0: और गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी.
1: 3 महीने के कितने हो गए? तो
0: जी
1: 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: चालीस
1: लगा
0: पचास
1: 40-50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए. आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं.
0: और पुरुषों में
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं. और
0: जी
1: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे. कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है,
0: ठीक
1: इसको
0: बात.
1: नॉर्मल नहीं कहा जाता है.
0: जी
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वेरी बहुत कॉमन चीज है.

0: ये है या नहीं, वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
1: ये जो
0: जिसको
1: आपने
0: हम,
1: टर्म यूज की
0: हाँ,
1: ये क्या है?
0: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है।
1: ब्लू कलर की रोशनी में?
0: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें, तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं। उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट
1: जी
0: इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं, और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू। सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है, और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
1: बिल्कुल
0: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है। तो वो आहिस्ता जो आना है, वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है।
1: जी बिल्कुल
0: जितना शेडिंग फास्ट, उतना जल्दी गंजापन,
1: ये समझने की बात
0: ये
1: है।
0: समझने की बात है। तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है, और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ
0: नहीं,
1: के।
0: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है, ट्राइकोलॉजिस्ट
1: ओके
0: एक डिग्री नहीं है।
1: जी जी
0: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं
1: ओके
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ,
1: जी
0: लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट, आप बोलोगे प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर, यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं, 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीज़ें, बाल्डनेस कॉमन चीज़ें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इशू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग,
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: महिलाओं में PCOD नाम सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है। ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है,

0: गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल, जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे।
1: बढ़िया
0: तो हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो पीसीओडी और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल

0: और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा,
1: जी जी बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
1: नहीं
0: 40 साल के, 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोज किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोज किया।
1: जी, ये बहुत आज के जमाने की चीज है।
0: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
1: जी
0: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
1: एक तरह से आप जो हैं वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई
0: यस।
1: अगर खान पान ठीक नहीं किया तो
0: नहीं,
1: इसका
0: सभी
1: असर।
0: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: वहाँ हेयर फॉल होता है।
1: उसको कैसे टाला जा सकता है?
0: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के।
1: ओके,
0: मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक हार्मोन थेरेपी। आप एस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
1: ओके,
0: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं और वहाँ उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
1: इस उम्र में तो सबका होता है, हमारा भी हुआ था।
0: बिल्कुल, यही डायलॉग होता है।
1: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं लेना।
0: हाँ, इसको कैजुअली नहीं लेना। आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया,
1: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए। महिलाओं में 30 से 40 बाल,
0: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30-40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शिकाकाई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में?
0: मेहंदी, रीठा, शिकाकाई, ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, पैस का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
1: उल्टा हो जाएगा।
0: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनको इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बॉटल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
1: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा?
0: यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
1: जी,
0: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
1: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी।
0: yes.
1: मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने
1: यस,
0: लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीजें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है।

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे हैं।
1: तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन हैं, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे।
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर के वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओ हो,
1: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
1: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
0: इन अ मंथ, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
1: 12 सेंटीमीटर साल में।
0: हाँ, तो 10 साल में
1: तो आप करिए। तो
0: नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
1: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
0: ओहो,
1: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं,
0: लेकिन वो थिन रहेंगे।
1: वो थिन, थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
0: जी,
1: तो वही कहना है वापस।

0: शेडिंग को पहले रोकिए।
1: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
0: यस,
1: बढ़िया गाना कैफी आजमी का है। तो
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए,
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत। और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि 2 महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी।
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉयिंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है

0: उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं, जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
1: और यहां तो दिन
0: उल्टा हो
1: भर का
0: जाता
1: खाना
0: है।
1: रात को हो रहा है।
0: हाँ, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
1: यस यस बिल्कुल।
0: हमारे टाइम पर, या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कॉर्टिजोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा?
1: बिल्कुल
0: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे, 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है, 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
1: चिंता की बात है।
0: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
1: जी
0: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
1: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी।
1: या
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है, कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है ना। इवन पैसिव स्मोकिंग, कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
0: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है?
1: बहुत बड़ा भ्रम है
0: जी।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
0: जी,
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
0: तो ये समझने की जरूरत है।
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: यस,
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: वाह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा साया साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का

0: राग
1: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बोंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अर्चो का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंड्रा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पेंडारी, कोटराही, मदनपुर, गुरमुटी, सोनहत, नवगई, गैना, धौरा, बिशुनपुर, सिलाजू, उचेरवा, चिनिया, महावीरगंज, इंदरपुर, शिवपुर, रामपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, घासीडी, सरगा, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मयूर चूंदी, कुंजारा, पाकर टोली, ढोंगा आंबा, उपका पानी, कुदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, झिक्की, खंताडाण, परसाडाण, पेटा, कुरडेग, सामरबार, मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजापानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, चन्हाट, तालदादर, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायली

0: खंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।
1: दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार
3: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गो।

हमर हाथी हमर गोट इस प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में है। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। गीत लिखा है समीर ने और बंदिश है नदीम श्रवण की।

ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम था हम हैं राही प्यार के। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। ये है फिल्म दिल से। आवाजें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की हैं। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं इस गीत के आनंद मिलिंद।

इस गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम का गाया हुआ ये गाना। इसे लिया है हमने फिल्म जिगर से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए श्रोताओं, अब हम सुनते हैं फिल्म सलामी का ये गाना। आवाजें हैं आशा भोसले और कुमार सानू की, और संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को लिखा है एक बार फिर से समीर ने।

और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना उदित नारायण की आवाज में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है नुसरत फतेह अली खां का। फिल्म का नाम है और प्यार हो गया।

ये गीत आपने सुना फिल्म और प्यार हो गया से। आवाज थी उदित नारायण की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार थे नुसरत फतेह अली खां। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार साथियों, युवा जगत में मैं श्रुति गौरहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही जानते हैं एक महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोरा के बारे में। वो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनकी शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई थी, जहां सरदार भगत सिंह और सुखदेव उनके सहपाठी थे। यहीं से उनकी क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। भगवती चरण ने बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया और इसी के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। भगवती चरण वोरा का विवाह दुर्गा देवी से हुआ। इस वीर महिला ने भी अपने पति के समान ही क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। वे दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले पुलिस अधिकारी स्कॉट के भ्रम में सैंडर्स को गोली का निशाना बनाने और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी जब गिरफ्तार हो चुके थे, तो इसी बीच क्रांतिकारियों ने वाइसरॉय की ट्रेन को बम से उड़ाने की असफल चेष्टा की थी। फिर यह निश्चय किया गया कि भगत सिंह को लाहौर की जेल से छुड़ाया जाए और इसके लिए भी बम बनाने की आवश्यकता हुई। उन्हीं बम का परीक्षण करते समय 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर भगवती चरण वोरा वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, हमारे भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में अनेक वीर सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, ये उन्हीं में से एक थे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और भूपिंदर सिंह की आवाज में। मेरा रंग

दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की स्वस्थ रहने, मस्त रहने और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहने से। तो दोस्तों, स्वस्थ होना तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में व्यस्त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ होने का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से भी है, और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है सकारात्मक सोच और नो ओवर थिंकिंग। दोस्तों, चाहे वो कोई भी मैटर हो, हमें चीज़ों का विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण हमारे दिमाग पर जोर डालता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की टेंशन लेते हैं तो हमारे दिमाग की नसों में तनाव आ जाता है, जिस वजह से हम अक्सर ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। कई आइडियाज़ भी हमारे दिमाग को समझ नहीं आते, जिससे हमारी कार्य क्षमता भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। और ख़ास बात यह है कि हमें ये बात समझ में भी नहीं आती। तो इसलिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग से हमें बचना है, और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को व्यस्त रखना। चाहे कोई भी चीज़ हो, बस अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। चाहे आप घर का कोई भी काम कर लीजिए, गार्डनिंग कर लीजिए, ड्राइंग, पेंटिंग या कोई भी गेम खेल लीजिए, दोस्तों से बातें कर लीजिए, गाने सुन लीजिए या फिर गाने गा लीजिए, बिना इस बात की फिक्र किए कि आपकी आवाज़ कैसी है, बिना ये सोचे कि कोई हंसेगा तो नहीं। चलिए दोस्तों, आज आपको एक लाइफ फंडा बताती हूँ। जब भी आपको लगे कि लोग आपका मजाक बनाने वाले हैं या आप पर हंस रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद अपने आप पर हंसना शुरू कर दीजिए। आप खुद की गलती पर जब हंसना सीख जाएंगे तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि सामने बैठे लोग क्या सोचेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ज़रूरी चीज़ें मजाक में उड़ा दें। अपना काम हमें पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ में कितने ही एक्सपर्ट क्यों न हों, पर हैं तो इंसान ही, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खुद को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को याद रखिए कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं, और दुनिया में हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंसान हैं। दोस्तों, हम अपने दिमाग को जो भी विचार देते हैं वही बढ़ता जाता है, और आप माने या ना माने पर अंततः ज़्यादातर वही सच हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, स्वस्थ रहें, सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है चलते चलते, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने, और आवाज़ से सजाया है अभिजीत और अलका ने।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आजकल जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर इन सब्जेक्ट्स में हमने अपनी धाक जमा ली तो फिर समझ लीजिए कि हमने अपना आधा सिलेबस पूरा कर लिया। हमारे कई साथियों को इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी दिक्कत भी आती है, तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, बीच से उठाकर कोई भी टॉपिक ना पढ़ें। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, खासकर मैथ्स में हमें एकदम बेसिक से शुरू करना चाहिए। होता क्या है, कई बार हम बड़े बड़े फॉर्मूलाज रट लेते हैं, ट्रिक्स रट लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में या तो क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है या हम फॉर्मूला में थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं। इसलिए जब तक हमें बेसिक चीज़ें समझ ना आए तब तक उनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब एक बार शुरुआती चीज़ें समझ आने लग जाए, उन पर पकड़ बन जाए, तो फिर हमारा ध्यान समय पर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता यह है कि हमसे परीक्षा में सवाल तो बनते रहते हैं पर समय ज़्यादा लग जाता है। और अक्सर मैथ्स के टीचर्स कहते हैं मैथ्स बाय प्रैक्टिस। इसका मतलब यह है कि मैथ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस की। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, दुनिया की कोई भी किताब रट लीजिए, लेकिन मैथ्स में हम जब तक रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते तब तक इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। इसलिए एक नियम बनाएं, या तो हर दिन या फिर हफ्ते में 3 दिन नियम से मैथ्स के सवाल बनाकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, चाहे कोचिंग जाकर पढ़ाई करिए या फिर किताबें खरीद कर घर पर, लगन और ईमानदारी होना ज़रूरी है। आजकल अगर सच में कोई पढ़ना चाहता है तो इस स्मार्टफोन से भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की जा सकती है। YouTube में सभी सब्जेक्ट्स के कितने सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं। अगर आज कंपटीशन बढ़ा है तो अच्छी और सुलभ शिक्षा भी उपलब्ध हुई है। विज्ञान ने हमें कई सारी चीज़ें दी हैं, जिनमें से एक स्मार्टफोन भी है। अब विज्ञान की चीज़ों को इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है और हमारे नियत पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह फ़ोन भी, अगर हम चाहें तो फ़ोन को पढ़ाई में अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लें या फिर उसी फ़ोन में बेकार की चीज़ें देखकर अपना समय बर्बाद कर लें। ये दोनों ही हमारे ऊपर है, इसमें फ़ोन की कोई गलती नहीं है। दोस्तों, हमारी बातें आगे भी जारी रहेंगी, लीजिए सुनिए कुछ संदेश।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्व

0: और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
6: बात करें इंग्लिश की तो उसके लिए रामबाण उपाय है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखना और साथ ही ग्रामर के रूल समझना। दोस्तों यदि हमें कोई भी भाषा सीखनी हो तो उस भाषा को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। आप डेली कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं या इंग्लिश के नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। जो भी शब्द हम बार बार डेली बोलते हैं, मन में उनको इंग्लिश में अनुवाद करने की कोशिश करें। यदि नहीं बने तो उसका जवाब खोजने की कोशिश करें, किसी से पूछें या डिक्शनरी में ढूंढें, या फिर गूगल तो है ही, आप गूगल कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब कोई भी नया शब्द सीखें तो उसे अपने आम बोलचाल में हमें लाना चाहिए ताकि हम वो शब्द भूलें नहीं। जब भी हमें किसी भी भाषा का अध्ययन करना होता है तो उसे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बस कॉपी किताब खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। हमें उस भाषा के ग्रामर या व्याकरण को समझना होगा, उसके रूल समझने होंगे और उस पूरी भाषा को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। किसी भी नई भाषा को बोझ नहीं समझना है, इसलिए नई भाषा पढ़ते समय धैर्य बनाए रखिए और धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स में सबसे ज़रूरी है पेशेंस और प्रैक्टिस, तो धैर्य के साथ अभ्यास जारी रखिए। चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम के दूसरे गीत का। लीजिए सुनिए अग्निपथ फिल्म का ये गीत। आवाज़ है उदित नारायण और सुनिधि चौहान की, संगीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है अजय तुल ने।

0: नमस्कार, लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान संबंधी आवश्यक जानकारी। मित्रों, साइबर अपराधी आम लोगों से रकम ऐंठने नित्य नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और कई बार भोले भाले लोग इस संबंध में पर्याप्त ज्ञान के अभाव में उनके कुचक्र में उलझकर अपना बहुत कुछ गंवा बैठते हैं। यदि किसी भी अनजान नंबर से आपके मोबाइल पर कॉल आता है और वह अपने आप को पुलिस, सीबीआई, ईडी या बैंक कर्मचारी अथवा न्यायालय का मजिस्ट्रेट बताता है तथा आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपकी गिरफ्तारी होनी है जैसी धमकी देता है या इसके एवज में बड़ी रकम की मांग करता है, तब ऐसे झूठे फोन कॉल पर विश्वास न करें, न ही डरें। ध्यान रहे, उपरोक्त विभाग किसी को ऐसे फोन नहीं करता है। ये साइबर अपराधी होते हैं जो आमजनों को डरा धमका कर पैसे वसूल कर भाग जाते हैं। इसलिए सावधान रहें। इस प्रकार के फोन कॉल आने पर फौरन डायल 1930 या पुलिस को सूचित करें। जनहित में सदैव बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।
1: दोस्तों, हमने अभी बात की कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है। जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस समय हमारे मन में कई चीज़ें होती है कि जब हम कमाना शुरू करेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। कई बार हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे सैलरी पर भारी पड़ जाती हैं। तो इस सब से बचने के लिए बजट नियम, जिसे 50-30-20 का बजटिंग रूल कहा जाता है, हमें इस नियम को अपनाना चाहिए। 50 का मतलब है कि 50% अपने कमाई का हिस्सा हमें उन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते या सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते, जैसे ग्रॉसरीज, बिजली, पानी, गैस के बिल, स्वास्थ्य बीमा या दवाइयाँ। 30 का मतलब है 30% कमाई का हिस्सा उन चीज़ों में देना चाहिए जो हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाने या शौक पूरे करने के लिए हों, जैसे बाहर खाना खाना, फिल्म देखना या मनोरंजन के साधन। और 20% का मतलब है कि अपनी कमाई का 20% हिस्सा हमें सेविंग्स और निवेश पर देने चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी फंड्स, म्यूचुअल फंड या FD। इन सभी में हमें 20% इनकम को ज़रूर देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जब भी कमाना शुरू करेंगे, अगर या फिर अगर कमा रहे होंगे, तो बजटिंग का ये फेमस रूल ज़रूर अपनाएंगे। तो दोस्तों, घड़ी ने इशारा कर दिया है, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं युवा जगत के अगले क्रम में। तब तक के लिए दीजिए श्रुति गौरहा को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा जगत FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब हम आपको जानकारी देंगे आज और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

ईमेल करें, गीत सुनें। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:20 पर, और इसी कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में आप सुनेंगे सपना अवस्थी के गीत, और रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 8:30 पर। ग्राम सभा का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। साथ ही कृषि महाविद्यालय बिलासपुर की उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पलता तिर्की से चैतु भैया की भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा बिलासपुर जिले की जलवायु अनुकूल फलोद्यान। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें पशुपालन कृषि के साथ बेहतर आय का स्रोत विषय पर जानकारी दी जाएगी। वाचन स्वर होगा अभिनव गौरहा का। आज सुबह का प्रसारण किया जाएगा 7:05 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे चिंतन, विषय होगा अनुकूल समय का इंतजार करें। आलेख है डॉक्टर रमेश चंद्र जैन का। सुबह 7:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और सुबह 10:30 पर नए तराने का प्रसारण होगा। 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर भी आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: सुबह 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा। 12 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण होगा। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा। शाम 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करे गीत सुने प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। रात 8:15 पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन सकेंगे। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस मा 27 अगस्त के राष्ट्र भर मा

इंडिया संवाद के करे जाही आयोजन। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम ले देश भर के 8 लाख ले ज्यादा युवा मन ले करही गोट बात। सुकमा जिला में जंगल ले सुरक्षा बल है माओवादी मन कोती ले डंप करेगे हथियार गोला बारूद और विस्फोटक जिनिस करे है बरामद। और प्रदेश में पाछू 2 दिन ले हो सरलग वर्षा के सेती लोगन के जनजीवन हुए है प्रभावित। कतको नंदिया नरवा हवे उफान मा। अब समाचार विस्तार ले। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस में 27 अगस्त के राष्ट्रभर में खेलो इंडिया संवाद के आयोजन करे जाही। ये दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम ले देश भर के 1600 आने आने जगह में मौजूद 8 लाख ले ज्यादा युवा मन ले गोट बात करही। माय भारत के राज्य निदेशक अर्पित तिवारी है पत्रकार मन ले गोट बात करत बतैन की केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत कोती ले मुख्य कार्यक्रम 29 अगस्त के जगह में 27 अगस्त के रखे जाही। ये महाअभियान के थीम युवा भागीदारी खेल विकास और राष्ट्र निर्माण रखे गए है। ये कार्यक्रम देश के हर एक जिला के दूदू महाविद्यालय में रखे जाही जेकर लिए देश के आने आने हिस्सा के युवा मल्ला एक कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म ले जोड़े जा सकी। छत्तीसगढ़ में अवैया बछर मार्च तक 5 लाख घर में सोलर पैनल लगाए के लक्ष्य रखे गए है। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है काली रईपुर में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन कोती ले रखे गए 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम के समापन समारोह में कहीन। उमन कहीन की राज्य सरकार के लक्ष्य छत्तीसगढ़ ला ऊर्जा के क्षेत्र में देश के सबले अव्वल राज्य में स्थापित करना है। श्री साय है बतायन की प्रदेश में अभी तक करीबन 95,000 घर के छत में सोलर पैनल लगाए गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है आज रायपुर में रखे गए कार्यक्रम में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में शैक्षणिक और खेलकूद में बने प्रदर्शन करैया निर्माण श्रमिक मन के होशियार लैका मन ला सम्मानित करें। ये दौरान मुख्यमंत्री है डीबीटी ले 1,45,000 ले ज्यादा श्रमिक मन के बैंक खाता में 39 करोड़ रूपया ले ज्यादा की रकम भेजीन। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जम्मो व्यवस्था अब ऑनलाइन होवैया है। एकर बर विभाग के मौजूदा व्यवस्था ला छत्तीसगढ़ स्मार्ट पीडीएस सिस्टम ले जोड़े जाते। एमा राशन कार्ड बनाए ले के उचित मूल्य दुकान के आवंटन खाद्यान्न के पूर्ति दुकान के स्टॉक और राशन बांटे तक के पूरा काम ऑनलाइन हो ही। स्मार्ट पीडीएस लागू होए के बाद अर्जी ला लेके मंजूरी और आगे के पूरा काम सिस्टम ले ही चलही। सुकमा जिला में थाना भेजी क्षेत्र के गांव भंडार पदर के जंगल ले सुरक्षा बल है माओवादी मन कोती ले डंप करेगे हथियार गोला बारूद और विस्फोटक जिनिस बरामद करे है। एमा एसएलआर राइफल भरमार बंदूक मस्केट 6 BGL लॉन्चर समेत कुल 23 ठिन हथियार शामिल है। एकर संगे संग 492 जिंदा कारतूस 240 जिलेटिन स्टिक और 18 किलोग्राम गन पाउडर समेत आने विस्फोटक जिनिस बरामद करे गए है। पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर है बतायन की ये कार्रवाई आत्मसमर्पित नक्सली मल्ले मिले जानकारी के आधार में करेगी। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ले छत्तीसगढ़ पुलिस कोती ले चलाए जा साइबर जागृति अभियान में काली 25 अगस्त के विशेष कार्यक्रम प्रसारित करे जाही। ये कार्यक्रम के प्रसारण रथिया 8:15 ले 8:30 तक होही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। बिलासपुर जिला में तखतपुर क्षेत्र के गांव बांधा में शेर के हमला ले एक मनखे के मौत हो गई। मौत हो गया जोगीपुर जंगल के फॉरेस्ट बीट क्षेत्र में बांस करील काटे और पिहरी लेबर गे रही से यही बेरा औचक शेर हा हमला कर दिस जेखर ले वो मनखे के मौकच में मौत हो गई। ये घटना के बाद वन विभाग हा गांव के लोगन ला जंगल कोती जाए ले मना करे है संगे संग सतर्क रहे के सलाह दे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। आज सावन महीना के चौथा और अंतिम सोमवार है। प्रदेश भर के आने आने शिव मंदिर मन में भिनसर हचले भक्त मन के भीड़ हवे। श्रद्धालु मन भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक रुद्राभिषेक करके विशेष पूजा पाठ करीन है। उन्हें कांवड़ यात्री मन भगवान भोलेनाथ के प्रतिमा और सुघर वेशभूषा संग मंदिर पहुँच के अपन मान्यता ला पूरा करीन। मंदिर के तीर्थखार मा फूलपान बेलपत्र के दुकान सजे है। उन्हें जगह जगह भंडारा के आयोजन करे गए है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अमरकंटक के जुन्ना ज्वाले

0: रामेश्वर महादेव मंदिर मा पूजा पाठ करके प्रदेशवासी मन खातिर सुख समृद्धि के मानता मानिन और वहाँ मौजूद श्रद्धालु और कांवरिया मल्ले भेंट करीन। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी मा भारतीय सेना के जवान मन के सम्मान मा कार्यक्रम राखेगी। कोसा आर्मी के मदद ले राखे गए ये कार्यक्रम मा भारतीय सेना के अधिकारी सैन्यकर्मी और अधिकारी मन भाग लीन। ये दौरान स्कूल के पढ़ैया नोनी मन है सैनिक भाई मन के कलाई मा राखी बांध के रक्षाबंधन के शुभकामना दिन संगे संग भारतीय सेना के जवान मन पर चिट्ठी और संदेशा लिखीन। गरियाबंद के देवभोग पुलिस ह खुटगांव अंतरराज्य के पोस्ट में 400 किलोग्राम गांजा संग 5 जिन आरोपी लग गिरफ्तार करे है। जब्त करे गए गांजा के कीमत करीबन 2 करोड़ रुपया बताए जाते। आरोपी मन के तीर ले 6.5 लाख रुपया नकदी समेत 2 ठीन चौपहिया गाड़ी घलो जब्त करे गए है। पुलिस के मुताबिक खुटगांव नाका तीर गाड़ी के तलाशी के दौरान गांजा बरामद करेगी। आरोपी ओडिशा ले गांजा लेके आवत रहीन। उन्हें कोंडागांव पुलिस है गांजा तस्करी के 2 आने आने मामला में करीबन 55 किलो गांजा बरामद करे हैं जेखर कीमत करीबन 28 लाख रुपया बताए गए है। ये मामला में 7 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए है। आरोपी मन के तीर ले 6 ठीन मोबाइल फोन और 2 ठीन गाड़ी घलो जब्त हुए है। उन्हें जांजगीर चांपा जिला में घलो 2 किलो गांजा संग 1 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे गए है। आरोपी फटफटी के डिक्की में गांजा ले जावत रही से जेखर कीमत करीबन 1 लाख रुपया आके गए है। प्रदेश में पाछू 2 दिन ले होबा सरलग वर्षा के सेती लोगन के जनजीवन प्रभावित हुए है। नंदिया नरवा उफान में हवय जेखर ले कतकोन रद्दा के अवई जवई बंद हो गए है। राजधानी रायपुर समेत आने आने शहर के निचली बस्ती में वर्षा के पानी भर गए है। बस्तर संभाग में इंद्रावती नंदिया खतरा के निशान ले ऊपर बुहावत है। नंदिया के जल स्तर बढ़त जात है। जगदलपुर के जुन्ना पुलिया के ऊपर ले पानी बुहात है। नंदिया नरवा उफान में होय के सेती कतकोन गाँव के सड़क संपर्क टूट गए है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मुनादी करा के लोगन ला चेताए जाते। उन्हें बीजापुर जिला में नंदिया नरवा के जल स्तर बाढ़े ले गांव गमई के क्षेत्र में अवई जवई प्रभावित हुए है। जिला के गांव चिन्नाक वाली तीर चिंताबागू नंदिया के बाढ़ में फंसे गांव के लोगन ला नगर सेना के टीम हा बोट ले नंदिया के दूसर छोर में सुरक्षित पहुंचाई। एती मुंगेली जिला के गांव पंडरभट्टा मा काली खेत ले घर लौटत एक जिन माई लोगन गाज के चपेट में आ गए जेखर ले उखर मौकच में मौत हो गई है। यही बीच मौसम विभाग हा अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कतकोन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा हो के संभावना जताये है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक संग भारी वर्षा के चेतावनी दे गई है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्षा की गतिविधि अवैया 6 दिन तक जारी रही। अब थोरकुन समाचार सार मा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा है प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के विरोध में काली 25 अगस्त के सबो जिला मुख्यालय में TET मुक्ति रैली निकाले के घोषणा करे हैं। ये बेरा में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के नाम में कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे जाही। वन मंत्री केदार कश्यप है जगदलपुर के डिमरापाल के अस्पताल पहुंच के रद्दा दुर्घटना में घायल जवान मल्ले भेंट करके उखर स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लीन और बने चिकित्सा सुविधा देवाय के निर्देश दीन। और बलौदा बाजार भाटापारा पुलिस स्वास्थ्य विभाग में फर्जी स्थानांतरण आदेश और फर्जीवाड़ा के मामला में 2 जिन और आरोपी ला गिरफ्तार करे है। ये मामला में अभी तक ग्रामीण चिकित्सा सहायक समेत 6 जिन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस में 27 अगस्त के राष्ट्रभर में खेलो इंडिया संवाद के करे जाही आयोजन। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम ले देश भर के 8 लाख ले ज्यादा युवा मन ले करी गोट बात। सुकमा जिला में जंगल ले सुरक्षा बल है माओवादी मन कोती ले डंप करेगी हथियार गोला बारूद और विस्फोटक जिनिस करे है बरामद। और प्रदेश में पाछू 2 दिन ले होबा सरलग वर्षा के सेती लोगन के जनजीवन हुए है प्रभावित। कतको नंदिया नरवा हवे उफान मा। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर।

कर 20 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि शीतल, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा दी, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, विरंगाम राजकोट से रुचि गुप्ता ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन रेनू रजनी प्रियंका, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा मधु सागर बालूजा, सोंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका रानी गजेंद्र कुमार हेयांश कुमार चंदन, पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन चोवाराम यदु निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू, कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन उषा प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित गर्व हिमाक्ष, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सीमू एकम दमन और अभिजोत, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मरकाम मोहन सिंह सहोदरीबाई मनमोहन सिंह गिरजाबाई चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना चैतन्य मेघा मस्कीन, देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल किया है मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज तलत फरहत रिफत नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता, जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या और सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज पीयूष कुमार और रोहित राज, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई। तो आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है परदेश। गीत गाया है कुमार सानू ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। अगला गीत है उदित नारायण की आवाज में, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत है भूषण दुआ का। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और इसे सुनने के लिए हमारे इन सभी श्रोताओं ने हमें ईमेल किया है। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता मिगलानी और सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, धुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, खमहरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम उन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाणा वड शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, लंघान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी और मालती चौधरी, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बोरेकर, नारायण यादव और भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से PS नहावकर, निर्मला विशाल, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंह गढ़कर, दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर ये गीत। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और आवाज उदित नारायण की।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

श्रोताओं, महिला सभा के लिए एक सूचना सुनिए। आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत लिखकर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं। महिला सभा में आपकी फरमाइश हमें मेल कीजिए। महिला सभा bsp@gmail.com, mahilasabhabsp@gmail.com में। महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार और गुरुवार शाम 5:35 से। तो श्रोताओं, अपनी फरमाइश के गीत लिखकर आप भेज सकते हैं। और इसी के साथ ये सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जो ईमेल पर आधारित है। अभी आपको हमने सुनवाया फिल्म सिर्फ तुम का ये गाना। आवाज थी उदित नारायण की, समीर ने इसे लिखा था और भूषण दुआ का संगीत था। और अब ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7:00। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार के लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।

0: अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 27 अगस्त को राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 8,00,000 युवाओं से करेंगे संवाद। सुकमा जिले में भंडारपदर के जंगल से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में डंप किए गए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान बरामद किए। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने खुटगांव चेकपोस्ट पर करीब 2 करोड़ रुपए कीमत के गांजे के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित, अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 27 अगस्त को राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देशभर के 1600 अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8,00,000 से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। माय भारत के राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि

0: केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माई भारत द्वारा मुख्य कार्यक्रम 29 अगस्त के स्थान पर 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस महाअभियान की थीम युवा भागीदारी, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण रखी गई है। ये कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के दो दो महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा ताकि देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं को एक कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके।
1: इसमें पीएम मोदी सर बात करेंगे युवाओं के साथ, उनको अपना मार्गदर्शन देंगे। इसमें युवाओं को चर्चा करने का मौका मिलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा, यूथ आइकन से मिलने का मौका मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आइडिया बॉक्स जो माय भारत पोर्टल पे रहेगा उसमें अपने आइडियाज़ देने का मौका रहेगा, और अगर उनका आइडियाज़ पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में अगर सिलेक्ट होता है तो ओनरशिप भी उसी व्यक्ति की रहेगी जिसने आइडिया दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है, एक मंच दिया जा रहा है सरकार के द्वारा युवाओं को कि वो नीति निर्माण का अपना हिस्सा बन सके, साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंच सके।
0: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत शैक्षणिक और खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 1,45,000 से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में 39 करोड़ रूपये से अधिक की राशि भी अंतरित की। छत्तीसगढ़ में अगले साल मार्च तक 5,00,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में छत्तीसगढ़ सोलर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम के समापन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 95,000 घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 31 अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में 2 महानिदेशक और 6 अतिरिक्त महानिदेशक भी प्रभावित हुए हैं। पवन देव को नगर सेना और नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाएं छत्तीसगढ़ के महानिदेशक पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं गुरजिंदर पाल सिंह को प्रशिक्षण और राज्य पुलिस अकादमी के महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। सुकमा जिले में थाना भिजी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भंडार पदर के जंगल से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान बरामद किए हैं। इनमें एसएलआर राइफल, भरमार बंदूक, मस्केट, 6 बीजीएल लॉन्चर सहित कुल 23 हथियार शामिल हैं। इसके अलावा 492 जिंदा कारतूस, 240 जिलेटिन स्टिक और 18 किलोग्राम गन पाउडर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने बताया कि ये कार्रवाई आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई है।
2: कि साउथ बस्तर एरिया जो था उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड दोहे डिस्ट्रिक्ट में था, डिस्ट्रिक्ट बीजापुर और सुकमा, और इसके साथ ही साथ बिकॉज बटालियन का मूवमेंट भी यहाँ पर था और जो एरिया कमेटीज जो खत्म हुई थी तो उन लोगों का जो काफी डंप है, और बीच बीच में कुछ जो बड़े माओवादी थे जो लोग न्यूट्रलाइज हुए, उन लोगों के जो डंप है वो अभी भी क्षेत्र में हम लगता है, और लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास जारी है कि वो जितने भी डंप है इस प्रकार के उन सबको जल्द से जल्द निकाला जाए ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर पाए। हम लोग लगातार जो डिमाइनिंग के ऑपरेशन है वो करते रहते हैं।
0: गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने खुटगांव अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर 400 किलोग्राम गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के पास से 6.5 लाख रुपए नकद सहित 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक खुटगांव नाका के पास वाहनों की तलाशी के दौरान 1 4-पहिया वाहन से ये गांजा बरामद किया गया। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे। वहीं कोंडागांव पुलिस ने गांजा तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में लगभग 55 किलोग्राम गांजा बरामद किया है जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल फोन और 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी 2 किलो गांजे के साथ 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मोटरसाइकिल की डिक्की से गांजा ले जा रहा था जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में बीते दो दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं, इससे कई मार्गों पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। वहीं राजधानी रायपुर सहित विभिन्न शहरों की निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया है। बस्तर संभाग में बारिश के चलते इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जगदलपुर के पुराने पुलिया के ऊपर से भी पानी बहने लगा है। नदी नाले उफान पर होने

के चलते दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क भी टूट चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वहीं बीजापुर जिले में भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित है। जिले के ग्राम चिन्ना कवाली के पास चिंतावागु नदी की बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को नगर सेना की टीम ने बोट के माध्यम से नदी के दूसरे छोर पर सुरक्षित पहुंचाया। इधर मुंगेली जिले के ग्राम पंडर भट्टा में कल खेत से घर लौट रही एक महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की गतिविधियां अगले 6 दिनों तक जारी रहेंगी। आज सावन मास का चौथा और अंतिम सोमवार है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन कर रहे हैं। अनेक स्थानों पर कांवड़ यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमरकंटक स्थित प्राचीन ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद श्रद्धालुओं और कांवड़ियों से भी मुलाकात की। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी में भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोसा मुख्यालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों और सैन्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सैन्य कर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों ने पोस्ट कार्ड पर भारतीय सेना के जवानों के लिए अपने हाथों से व्यक्तिगत पत्र और संदेश लिखे। आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर कल 25 अगस्त को विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण रात 8:15 से 8:30 तक होगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। बिलासपुर जिले में तकतपुर क्षेत्र के ग्राम बांधा में शेर के हमले से एक युवक की मौत हो गई। मृतक जोगीपुर जंगल के फॉरेस्ट बीट क्षेत्र में बांस करील काटने और पिहरी लेने गया था। इसी दौरान अचानक शेर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के विरोध में कल 25 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में टीईटी मुक्ति रैली निकालने की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग में फर्जी स्थानांतरण आदेश और फर्जीवाड़े के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक ग्रामीण चिकित्सा सहायक सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 27 अगस्त को राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 8 लाख युवाओं से करेंगे संवाद। सुकमा जिले में भंडार पदर के जंगल से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा भारी मात्रा में डंप किए गए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान बरामद किए। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने खुटगांव चेकपोस्ट पर करीब 2 करोड़ रुपए कीमत के गांजे के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित। अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग।

कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनने के लिए हमें ईमेल किया है कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेयांश, काना, आदित्य देवांगन, बुड़गान से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, बरेली, कैंट, चनहेटी, उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हिरुमन, पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, खोंदला, उदयपुर, सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्य पैकरा, भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुद्दीन, जिशान शाहनवाज, अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी, नीरज, शुभम, सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एसके पप्पी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु दिल्ली से ही, दिल्ली से प्रमिला हेमा और अंतरा सिंह, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली और असमा वली। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया। साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और बंदिश है आनंद मिलिंद की।

आप सुन रहे हैं ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम। अगला गीत है फिल्म धड़कन से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने। समीर ने इसे लिखा है और संगीत है नदीम श्रवण का। और इसे सुनने के लिए हमें ईमेल किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया साजिद शाहिद। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला। मलौत

पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना, मेंडी शर्मा। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसराज और नरगिस खातुन। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानु प्रिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर सिंह कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गंवाड़कर, टुकटुक गंवाड़कर, प्रिंस, एकांश, सुमित, ध्वनि गंवाड़कर। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत और मनु। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो। तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता। कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम पडोटी, जयंती हेमंत, उमंग और मोक्ष पडोटी। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन, प्रतिभा और इंशप्रीत शर्मा। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवद और सानवी देशमुख। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम। गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर। दिल्ली से सोनम सना और अदीबा। मनौत से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू जाजोरिया। दुर्ग से कांबड़े सीआर, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। तो लीजिए सुनिए आप सभी श्रोताओं के मेल पर ये गीत।

0: पास तुम रहते हो।
1: ईमेल करें गीत सुने में। अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल किया है महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रितेश संघई, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्नील रक्षता लोखंडे, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्वनी शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदुलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत क्रिस्टी पटवा, वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, कोटवा नारायणपुर बलिया से

ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार, हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोंड और मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, लसूडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन कोमल, परी कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा, श्राव्या रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती काजल, पूर्वी हेजल, राजेश रेशमा साहू, छोटी बलिया कजत मुंबई से अब्दुल कराम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लखनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू, नागरकोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्य साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर लीजिए, सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है। आवाजें हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज के। समीर ने इसे लिखा है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

बने रहे आमदनी के स्रोत। और बात करें कहूँ पशुपालन के, जेमा खास करके दुधारू पशु के जहाँ बात होते तो दुग्ध उत्पादन और एखर ले जुड़े बूता सही मायने में देखे जाए तो संगवारी हो हमर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ के हड्डी आए, है ना भाई। दुग्ध उत्पादन ले जुड़े व्यवसाय है, ग्रामीण क्षेत्र के जौन करोड़ों छोटे बड़े किसान हैं और महिला हैं, संगे संग जौन रोजगार के तलाश में एती ओती भटकत हैं, उनखर बर एक रोजगार के बढ़िया अवसर बनते। खास करके जौन हमर दाई दीदी बहनी मन हैं जिनहा बूता काम करे दूरिया नहीं जा सके, उनखर परिवार बर ये जौन पशुपालन है, दुग्ध व्यवसाय है, मांगे वरदान है। एखर ले हमर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार होते, एखर ले आजीविका चलते, लोगन मन ला रोजगार मिलते। जौन दूध के व्यवसाय करते हैं संगवारी मन जिन मनी घर से जुड़े हैं, उनखर में पैसा के कमी नहीं रहे संगवारी हो। सामान्य एक किसान है, खेती बाड़ी करते हैं तो हमने ये देखते हैं कि मतलब पैसा की जरूरत पड़ते तो यही की थे कि भाई फसल आए, फसल कटा है, मंडी में बेचा है, तेखर बाद पैसा मिली तो कोनो नवा काम ला कर पाबो। फिर जौन मन हाँ दुग्ध के व्यवसाय करत है, पशुपालन करत है, उमन जैसे ATM अपन घरे में रखे है, संझा बेरा बिहनिया बेरा दोनों बेरा जहाँ दूध लेगी ना आदमी है वो तुरते पैसा दे देते। तो एक कहे का मतलब ये है घर जौन है बढ़िया पोट हो जाते, है ना भाई। और घर बढ़िया पोट हो जाते आर्थिक रूप ले, तहाँ शरीर बढ़िया पोट हो जाते, तहाँ दवाई पानी के जोन पैसा है अस्पताल में देना है, आनी बानी के जोन बीमारी है छोटे मोटे होत रही थे वो सब घला नहीं हुए, शरीर मजबूत रही, खान पान में बदलाव हुआ है, खान पान बढ़िया हो जाए। और हम ये देखते हैं संगवारी हो जौन ये दूध के व्यवसाय करते हैं उमा एक संग और अबड़कन फायदा है भाई, जिसे कतको समय से हो जाते कि दूध नहीं बेचा है ना, तो कोई बात नहीं भाई वो माँ दही जमा दे, अब वो दही बेचा है तो खाले ज़्यादा महंगा हो जाए, अब बोला दही है ज़्यादा कन तो मथी तो मही बन जाए, मही और बेच देते हैं। और सबले ज़्यादा जो महंगा जिनिस होते हैं माँ वो होते घी, कनों जगह तो 1200 ले 1500-2500 तक के घी के कीमत मिलते। कहे के मतलब दुग्ध व्यवसाय में पैसा बहुत बढ़िया है। अब बात करी हमन केवल पशुपालन में दूध बस के आमदनी नहीं है, एमा जिसे पशुधन है ओखर गोबर है, गोबर ले बढ़िया जैविक खाद बनते है ना भाई, जैविक खाद ले जैविक खेती होते, जैविक खेती में जिन उत्पाद होते कोनो भी उत्पाद रहे चाहे वो साग भाजी रहे चाहे अनाज रहे, ओखर जौन कीमत है बाजार में सामान्य जौन रसायन विधि ले रासायनिक विधि ले करे गए खेती है ओखर ले ज़्यादा मूल्य मिलते। एखर संगे संग हम देखथन गोमूत्र जो उन्हें ओखले फिनाइल बनना, कीटनाशक बनना, जीवामृत बनना, घनामृत बनना, आनी बानी के जी फसल में डारे के दवाई बनाए जाते और यहू मन बढ़िया लीटर में बोतल में भरा भरा के बेचाते। कहे का मतलब ये है कि दुग्ध के फायदा जो होते ओखर संगे संग पशुपालन जो करते संगवारी मन ओला ओखर हर उत्पाद के फायदा मिलते। और यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है जो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, गोबर के छेना तकोहा 5-5, 10-10 रुपये में बेचा थे संगवारी हो, नवरात्रि आ गए कहूँ सावन है तो हुम हवन बर जरूरी है ना भाई, तो शहर में तो यहू बेचा थे। कहे का मतलब ये है नगदी के ये है सौदा। और संगे संग हमन ये देखथन कि जैसे पशुपालन है बहुत बड़े बाड़ा लगा के बहुत अगन पशु पालना, एखर बर तो बहुत पैसा लगी, बहुत कन तकनीक के ज्ञान होना चाहिए, ऐसे बात नहीं है। बूता करना है तो शुरुआत कर सकथन, थोर कन ले शुरुआत करथन, अरे दुएट होगा रख लेथन भाई घर में दूट होगा ले शुरू कर लेथन। एकर बाद हमन आप ला ये बताना चाहिए कि आप मल्ला सरकार डहर ले तको इमा सहायता मिलते, सब्सिडी मिलते, है ना भाई। पशुपालन विभाग डहर ले आनी बानी की योजना चलत है जेमा पशु मन के टीकाकरण, उखर देखभाल, उखर खान पान, ये जम्मो बूता आप मल्ला सरकार डहर ले सहायता के रूप में दे जाते। संगे संग हमन तो है हन रेडवा में आनी बानी के जानकारी सकेल सकेल के बटोर बटोर के आप मन लाथन और सुनाथन, आप मन सुनते रही था अब एखर लाभ तक हो ले था। तो हम तो ये कि वो संगवारी हो भारत जिसे कृषि प्रधान देश में गरुआ गाय को सड़क में खड़े है, ये बड़ा दुख के बात है। और हमन ला गरुआ रखना चाहिए, हमन के सियान मन घला ये कहे हैं कि गरुआ में जम्मो देवी देवता के वास होते, और होते
ये तो होते चे, लेकिन ओखर आमदनी हमें आप मन ला बहुत कन बता।

जम्मू संगी संगवारी दाई दीदी भाई बहनी मनला चैतू भाई के राम राम जय जोहार। संगवारी हो देखो पानी यहाँ झमाझम गिरत है न भाई, हर मौसम के अपन एक मजा होते, फिर अति सर्वत्र वर्जित कहे गए है पानी के मजा, कभू कभू सजा कस लगे लगते। दिन भर के सीटीर सीटीर पानी मन कंझा जाते, कतेक ल भजिया खाए आदमी हैगा, है ना भाई। देखते हमन संगवारी हो गांव में हमार जौन दाई दीदी है बहनी मन है, अपन आमदनी ला बढ़ाए खातिर भर खेती किसानी के संगे संग और बड़ कन बूता करते, बाड़ी बकरी बूता है, पशुपालन है, मछरी बोकरी पालन है, कुकरी मुर्गी बतख के पालन है जैसन, और अबड़ कन नवा नवा आनी बानी के उदी मेहमन करत रही थे, जेखर ले आमदनी एक ले ज्यादा।

0: संगी हो बड़ सुघर गीत सुनेन ये लगावत रहीन है कुलेश्वर ताम्रकार औ कविता हिरकने मन। देखो ये बेरा इसे संगवारी हो के बीजा छींच दो तो पौधा जाम जवत है रुखुआ बन जवत है। कहे का मतलब ये है अभी ये जो बरसात के मौसम है रूख राई लगाए के पेड़ पौधा लगाए के बड़ा सुघर बेरा होते। आज की भेंट वार्ता घलो ऐसने है बढ़िया कि कौन प्रकार ले सरकार घला ये माँ सहयोग करत है। तो आज की भेंट वार्ता के विषय है पौध उत्पादन वितरण और पौधरोपण की जानकारी। ये विषय में जानकारी देवत हैं श्रीमती निशा चंदेल जी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शासकीय उद्यान मस्तूरी। अब इखरसो गोट बात करे हमारे राजू भैया मन आवाओ चेत लगा के सुनथन ये सुघर गोट बात ला।
1: किसान भाई बहनी हो यही मौका है कि हमन आनी बानी के फलदार पौधा सामाजिक वान के पौधा जड़ी बूटी के पौधा अन्य जेन प्रकार के हमन पौधा हमला मिलत है वो पौधा ला अपन बारी है कोला है तालाब के मेड़ है खेत के मेड़ है।

0: परिया है एमरुद्दीन मोरे सारा समझिया। आज हम अपन ला बहुत बढ़िया जानकारी सुनाबो। विषय है पौध उत्पादन वितरण और पौधरोपण के जानकारी। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे स्टूडियो में है श्रीमती निशा चंदेल जी, जो मन है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, आप शासकीय उद्यान मस्तूरी में पदस्थ हो। बन जी, आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार, राम राम।
1: राम राम राजू भैया।
0: ये बता देवा, जहाँ तक बात करबो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाले के पूरा जगत में विख्यात है। पौधा के बात करबो, हमन फलदार पौधा के बात करी के सामाजिक वन की पौधा के बात करी, आपके उद्यान विभाग के द्वारा वितरण के का कैसन व्यवस्था करे गए है, हमर कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई बहनी मतलब विस्तार ले बताओ आप।
1: सबले पहली मैं किसान भाई मतलब बताना चाहता हूँ कि हमारे उद्यान विभाग में हमन पौधा वितरण के मतलब पौधा उत्पादन भी करथन। एकर साथ साथ जब बरसात के समय आते तो हमन पौधा ला निःशुल्क में वितरण भी करथन। एकर अलावा जिन किसान भाई मन नकदी में अच्छा वेरायटी के पौधा चाहत हो तो मल्ला नगद में भी हमारे विभाग से पौधा दे के प्रावधान है। एकर अलावा हमारे यहाँ पौधा भर अनेक प्रकार के योजना संचालित है, जिसमें किसान मन के हमन कागज भी व नक्शा खसरा लेके ओ मल्ला निःशुल्क में पौधा देथन। तो हमारे विभाग में मुख्य रूप से हमन दो तरीके से पौधा उत्पादन करते हैं। एक हमारा मनरेगा से हमारा पौधा उत्पादन करे के लक्ष्य मिले रही थे और एक होते विभागीय योजना में। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा मनरेगा में कैसे कैसे हमन करथन ओकर बारे में बताऊं।
0: स्वागत
1: है। तो मनरेगा में हमन मुख्य रूप से फलदार पौधा और वानिकी पौधा है, ये दो पौधा है, दो दो तरीके के पौधा के उत्पादन करथन। तो जे में फलदार में हमारा आम हो गए, अमरूद हो गए, कटहल हो गए, जामुन हो गए, सीताफल हो गए, ये पौधा के उत्पादन करे के लक्ष्य मिले है। एकर अलावा जैसे अगर वानिकी पौधा जिन छाया देते ते में हमला नीम हो गए, गुलमोहर हो गए, अर्केसिया हो गए, करंज हो गए, खमार हो गए, ये पौधा के उत्पादन के लक्ष्य मिले रही से। जब मनरेगा के तहत हमला लगभग 30,000 पौधा के उत्पादन करे के लक्ष्य मिले रही से। तो जब यह लगभग 2025-26 में हमला लक्ष्य मिले रही से, जिन पौधा के वितरण हमला 2026-27 में करना रही से, तेमा विभाग के द्वारा हमन 20,000 पौधा के उत्पादन ए वर्ष में करे हवन और जिन बच गए 10,000 देखा हमन अगले साल मतलब उत्पादित करके ओला वितरित करबो।
0: तो
1: एमा हमन सबसे पहली हमला 2025-26 में का लक्ष्य मिलिस तो हमन तैयारी कैसे कैसे करे हन तेला मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ। तो एकर लिए तो सबसे पहली हमला बीज है जेन हमला हमर जो जिला ऑफिस है वहां से हमला प्राप्त हो रही से। तो एकर लिए सबसे पहली बीज है तो हमला मिट्टी, गोबर खाद और रेती के जरूरत पड़ते। तो एकर लिए हमन नर्सरी मन का करें कि हमन उका थैली भरे के प्रोसेस ला पहले शुरू करे हन। तो जब मैं थैली भरना रही थे तो सबसे पहले थैली भरे बार हमला मिट्टी, गोबर खाद और रेती की आवश्यकता पड़ते। तो वहां हमन दो भाग मिट्टी उपयोग करे हन, एक भाग गोबर खाद और एक भाग रेती ला मिला करके हमन ओला जो 6x8 के पॉलीथीन आते तेमा भर के रखे हन।
0: बहन जी, जिन पौधा रोपण के बाद चलत है हमारे किसान भाई मन ला, कतेक उम्र के पौधा ला आप मन उपलब्ध करा था?
1: तो जैसे हमन अब यह का मनरेगा वाला है तो ऐसे रही थे कि अब पिछले साल हमारे लक्ष्य मिली तो आई साल बांटना रही थे। तो लगभग ओखर हाइट है 1 फीट 1.5 फीट तक जाते,
0: मतलब 6 महीना पौधा,
1: 6 महीना के पौधा हमन कही सकते हैं। लेकिन अगर जैसे विभागीय योजना में हमला देना रही थे तो ओमा हमन 2-3 साल के पौधा ला वितरित करते हैं, जेना कम से कम 3 फीट 4 फीट के हाइट के पौधा हो जा रही थे ते मल्ला हमन विभागीय योजना में देते।
0: आप मन के उद्यान विभाग निश्चित रूप ले रोजगार के रद्दा उपलब्ध कराते हमारे किसान भाई मन पर। आमा, नींबू, चीकू, संतरा, पपीता अगर लगाना चाहिए तो काय पौधा अपने विभाग के माध्यम ले उपलब्ध होते बहन जी?
1: हमारे यहाँ से सब कहा सब तरीके के पौधा हमला मिल जाते। अगर तुम बीजू कही है तो बीजू जैसे कि ग्राफ्टिंग वाला जिन कही थे कलमी वाला तेनो पौधा हमारे विभाग के द्वारा हमन उपलब्ध करा देते हैं।
0: जी जी जी जी। तो ये बता देवा, अगर व्यवसायिक ढंग हमारे किसान भाई मन आपके विभाग ले पौधरोपण करना चाहते तो कतेक पौधा एक किसान ले उपलब्ध करा था बहन जी?
1: जैसे कि अभी पंचायत मनरेगा में पंचायत ले देना रही से तो हमन 400 पौधा दिए हैं एक पंचायत ला। और अगर विभागी में देते हैं तो जैसे कि 2.5 एकड़ है, 2.5 एकड़ के पीछे अगर वहाँ आमा लगाते तो ओला 100 पौधा देते हैं। अगर वो हमारे राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत हमला अमृत के लक्ष्य मिले रही से तेमा हमन 2.5 एकड़ के पीछे लगभग 555 पौधा देते हैं। अगर वह 4x4.5 के डिस्टेंस में लगावत है तो, अगर वह 3x3 के डिस्टेंस में लगाई, मतलब 3 मीटर पौधा की दूरी और 3 मीटर और लाइन से लाइन के जो दूरी रही थे, तब वो मल्ला 1111 पौधा दे के प्रावधान है। अगर वह हाई डेंसिटी नहीं लगावे, मतलब ज्यादा ज्यादा दूरिया में भी लगाते, जैसे अमरूद
0: सघन खेती नहीं करते,

0: खेती नहीं करत है तो मान ला हमन अमरुद में 277 पौधा देथन, आमा में 100 पौधा देथन, और अगर ओहर वही क्या कहते सघन खेती करत है अगर आम के तो ओला 400 पौधा देथन, मतलब वहाँ ओखर दूरी के हिसाब से हमन यहाँ पौधा मन उमला उपलब्ध कराते हैं।
1: हमार कार्यक्रम ने सुनने के बाद हमार किसान भाई मन कल मान ले पौधारोपण करे के विचार नन भाई रखा थे तो उन कहाँ कैसे संपर्क करा विस्तार बताओ ना आप मन।
0: जैसे अगर कोई किसान भाई मन अगर हमारे पौधा लगवाना चाहते तो उमन मस्तूरी में हमारे जो नर्सरी है वो हर तहसील कार्यालय के बाजू में है, वहाँ आके मल्हार जाए वाला जो रोड है वहाँ आके हमारे मन से संपर्क कर सकते है। जैसे विभागीय योजना के जानकारी ली तो वहाँ हमन लाकर से कागज के रूप में हमन B1 आधार कार्ड बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज के फोटो लेते।
1: अच्छा ये तो हो गया आपके वितरण के बाद, अगर पौध रोपण के बाद करबो तेखर विशेष जानकारी हमारे किसान भाई मन कैसे रखा है बहन जी।
0: जैसे अगर मतलब पौधा लगाना है तो सबसे पहली मतलब का करना चाहिए गर्मी के समय में जिन हमन समर प्लांटी थे गहरी जोताई समर में करते हैं
1: मतलब
0: तैयारी करना है तो सबसे पहले मतलब जैसे कि अप्रैल महीना आई तो मतलब गहरी जोताई करके छोड़ देना चाहिए। जैसे कि गहरी जोताई कर ले, जोताई करे के बाद 15 दिन के बाद जमीन ला खाली छोड़ देना चाहिए। खबर की जैसे की उम्र तेज धूप पड़ते तो कुछ भी जैसे पिछला साल हमन कोई भी फसल ले रही थे देखा कीड़ा बीमारी रही थे तेना का होते कि गर्मी के सूर्य के प्रकाश पड़ते तो खत्म हो जाते तो या एकर अलावा जैसे जोताई करें ओकर बाद हमन देखें कि उमा कुछ कीड़ा बीमारी लगे है तो ओखरो हमन ओका उपचारित कर सकत हन। जैसे कि वो जमीन है तेला हमन फार्मेलिन के घोल से उपचारित कर सकत हन या फिर कोई फंजीसाइड वगैरह डाल के हमन रख सक डाल के छिड़काव कर सकत है। जैसे फार्मेलिन से करसन तो 2% अगर हमन फार्मेलिन ला पानी में घोल करके ओला 15 लीटर पानी में घोल देना चाहिए ओकर बाद स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे करे के बाद ओला हमन पॉलीथीन से ढक देना चाहिए।
1: अच्छा बहन जी ये जानना चाहबो जिसे पौध उत्पादन वितरण और रोपण की जानकारी दे बार आप मना है आपले हम विशेष जानकारी ये जानना चाहतन जैन किसान भाई मन वर्षा के बाद पानी के बाद महीना शुरू चलत है कि दवा तो रोप चुके हैं पौधा उमन ला विशेष करके का बात के ध्यान दे के जरूरत है जिसे अभी चर्चा चलाते रहा अपन कीड़ा मकोड़ा के तो का बात के ध्यान रखा विस्तार ले बताओ।
0: जैसे तो मैं पहली बताए कि गर्मी में उमन ला गड्ढा खोद के रखना चाहिए। जैसे अभी बरसात में गड्ढा खोद दिया तो उमा का रही की बहुत सारा परेशानी आती थी गड्ढा फंजीसाइड फंगस लग जाते बैक्टीरिया कुछ भी के भी परेशानी आत रही थी तो मैं किसान भाई मन लग कही तो उमन गड्ढा ला तो गर्मी समय खोद देवे ओकर बाद जैसे पहली बारिश होते या फिर जैसे ज्यादा गैप हो गए तो थोकन बारिश होगी तो वहाँ पौधा ला रोपण करना चाहिए। तो पौधा ला रोपित करे थे तो ऐसे नहीं है कि पूरा ओकर पत्ती जहाँ तक निकले वहां तक रोपित करे थे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओकर आधा जो डंगाली रही थी मतलब पत्ती के नीचे से आधा भाग में ओला लगाना चाहिए। एकर अलावा वो मतलब थाला बना के ये पौधा के रोपाई करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पौधा लगावा थे और पूरा मोटा भर लेगा कही थी मिट्टी ला भर देवा थे ऐसा ना काम नहीं करना चाहिए। पौधा ला लगावा था ओखर बाद ओखर क्या कहते किनारे किनारे से जैसे थाला बनाते 5 सेंटीमीटर जैसे पौधा है जैसे आमा है तो 10 सेंटीमीटर तक के ऐसे का कहते हैं मतलब घेरा बना के पौधा लगाना चाहिए। और कभी भी
1: अच्छा निशा चंदेर बहनी ये बता देवा लगभग लगाओ हमला ऐसे लगते घूमथन था हमारे छत्तीसगढ़ में नींबू वर्ग जिन बगीचा है वो कम हो जाते हैं ना भाई तो पौधारोपण करे बार हमारे किसान भाई मतलब खास करके नींबू वर्गी का सलाह देना चाहता।
0: सबसे पहले बताओ कि नींबू है इतना अच्छा फसल है कि ओला ना ज्यादा पानी लगे
1: जी
0: ज्यादा कीड़ा बीमारी भी नहीं आवा। एकर अलावा हमारे यहाँ सब कही थे इति एरिया में कि बंदर खाते लेकिन नींबू ऐसे फसल है जिला बंदर भी बिंदरा खावे नहीं करे गरुआ तक नहीं खावे तो सबसे अच्छा ये है कि
1: बाजार में सबसे ज्यादा
0: रेट रही थे। तो ऐसे नहीं है कि बहुत किसान मन जैसे अपन हमारे मस्तूरी कथी बताता हूँ ओती बार मानिक चौरी वहाँ 4-5 किसान ऐसे है जिनमें 2-3 हेक्टेयर में मतलब नींबू के खेती कर रहे थे। तब मैं किसान भाई मन कहता हूँ कि अगर वो मल्ला देखना है तो हमारे मानिक चौरी में 2 किसान है तिखर बारी ले जाके देखे उमन कैसे तरीके से खेती कर रहे थे इमा से तुम मल्ला बहुत फायदा हो।
1: मतलब हमें कह सकते हैं कि नींबू वर्गी पौधा गलो के व्यवसायिक खेती कर जा सकते
0: बढ़िया हाँ हमारे विभाग से हमारे नींबू के पौधा भी देथन अगर कोई किसान अपन खुद से लगावत है तो ओला सब्सिडी भी देथन।
1: अच्छा ये बता दो अभी जिसे पौधरोपण के बात चलत है बहन जी एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा ले भरपूर अने दर्मी है ना भाई ये कर खेती अगर किसान भाई मन करना चाहिए तो कर सकते थे
0: कर सकते थे। अनार की खेती तो अच्छा है वह हमारे यहाँ के जो वातावरण है वह एक अनुकूल भी खबर की अनार है तो छिलका तक हमारे जिसे

0: कॉन्स्टिपेशन हो जाते,
1: हाँ
0: कई तरीके से दवाई के रूप में मिलते,
1: पूरा पंचांग ओखर काम आते
0: काम आते
1: जी।
0: पूरा, मतलब ओखर फल से लगा के ओखर छिलका तक ले हमन यूज करथन। तो हमर
1: हाँ
0: विभाग में हमन नर्सरी में अनार के पौधा भी उत्पादित करथन।
1: अच्छा, अभी आप मन
0: तो
1: मनरेगा के तरह अपन पौधा उपलब्ध कराथन इसे कहीं बताते रहते हैं, सामाजिक वानिकी पाने पौधा को शामिल करे का
0: हाँ, ओमा अमन वानिकी पौधा जैसे कि गुलमोहर हो गए,
1: जी
0: जैसे अरकेसिया हो गए,
1: जी जी
0: नीम हो गए, जैसे कि खमार हो गए, जिन तुम्हारी इमारती लकड़ी भी देते
1: जी
0: तुम्हन खेत के मेड़ में भी लगा सकत हवा, तो ये सब पौधा भी हमन ओमा देथन।
1: जी
0: ओहा कभी कभी कुछ बीमारी भी हो सकत है वायरस के, या
1: जी
0: तो फिर ओमा मैग्नीशियम के कमी भी हो सकत है, जेकर वजह से का कहते मैग्नीशियम आयरन के कमी के वजह से भी पत्ती पीला पड़े लग जाते। मतलब हमारे यहाँ के देखा जनरली मिट्टी में हम देखते हैं कि बोरान के कमी है वह,
1: जी जी
0: जिंक के कमी है वह। तो मैं किसान भाई मन कहता हूँ कि कोई भी फसल लगाए से पहली,
1: जी
0: चाहे वो धान लगावे, चाहे सब्जी लगावे, चाहे वो फलदार लगावे,
1: सामाजिक उद्यान की
0: हाँ
1: पौधा लगावे।
0: लगावे कुछ भी लगावे, तो वो पहले अपन मिट्टी रे थोड़ा सा वो गई थे उखर परीक्षण करवा लेवे कि ओमा नाइट्रोजन कमी थोड़े नहीं या कोई भी चीज के।
1: बहन जी, पौधरोपण के बारे में बढ़िया जानकारी आप दे था, लेकिन जिसे भी हम लगाथन पौधा तुरते फल तो नहीं दे, हमारे किसान भाई मतलब तुरंत आमदनी की जरूरत है, तो आप ले जानना चाहथन जिसे आमा, नींबू, चीकू, संतरा, सामाजिक वानिकी पौधा के जानकारी बहुत सुंदर सुंदर ढंग ले आपमन देता। बीच में अगर अंतरवर्ती फसल लेना चाहते तो फूल के खेती हमारे किसान भाई कर सकते का?
0: आराम से कर सकते हैं, जैसे हमारे जो फलदार पौधा होते
1: जी
0: ते मल्ला तो हमें 2 मीटर में नहीं लगन, हमारे किसान भाई मल्ला लगते कि हमारा कितना जल्दी से जल्दी
1: पैसा मिल
0: आय हो सकते हैं।
1: जाए।
0: देखा ले ओमन का करते हैं कि ओमन
1: हाँ
0: दूरिया दूरिया में लगाते,
1: जी जी जी
0: जैसे नींबू ला 6-6 मीटर लगावा, ओखर बीच में खाली जगह बच गए, ओमा तुमन सब्जी लगा सकत है, या फिर तुम्हारे जैसे गेंदा, गेंदा के हमारे यहाँ साल भर डिमांड रही
1: जी
0: थे,
1: जी
0: कतका 100-100 रुपए, 80 रुपए किलो तक जाते,
1: 8 काल 12 महीना फूल
0: बात
1: थे।
0: आठों काल आजकल जैसे कलकतिया वेराइटी रही थे
1: हाँ
0: तेन
1: हाँ हाँ
0: तेना फूल थे ला
1: जी जी
0: मरिया, तो हमारे यहाँ गेंदा तक के भी मतलब हमारे यहाँ विभाग से हमन देवत हन,
1: जी जी
0: एदारी हमारे मस्तूरी ब्लॉक ला गेंदा के भी मतलब लक्ष्य मिले हुए,
1: हाँ
0: जेमा गेंदा के कटिंग किसान मल्ला मिल जाए, वो मना के हमारे यहाँ से गेंदा कटिंग भी लगा सकते थे, पौधा के बीच में गेंदा लगा ले वे, जेना का कहते 2 महीना 3 महीना के बाद तो अच्छा से, 2 महीना के बाद तो आए लग जाते वो फूल। वो खुद से गेंदा के कटिंग ऐसे नहीं कि एक पीत लगा दे हैं तो मर जाए, ओकर खुद से वो कटिंग तैयार कर लेवे
1: माने
0: और
1: जुन्ना
0: ओकर
1: पौधा ले हम नया पौधा बना
0: नया
1: सकता
0: पौधा
1: है।
0: बना सकत हवन, ऐसे नहीं है
1: हाँ,
0: कि पहली कारदरी से कि ओकर जो पंखुड़ी रही थे तेखर से लगावे, तो
1: जी
0: एक बार फूले ओकर ले फिर खत्म हो जात रही।
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: का है मन कटिंग से कटिंग, जैसे एक
1: जी
0: पौधा
1: जी
0: लगी थोकन बड़े हो गई, सो 10-15 सेंटीमीटर के ऐसे ही जड़ पकड़ ली, तो
1: मतलब
0: फिर हमन ओकर कटिंग काट के फिर
1: गोंदा
0: से लगा
1: के
0: सकते।
1: पेड़ एक माले अनेक छोटे छोटे पौधा बनाई अनेक इसे
0: अनेक
1: कर
0: ऐसे कह
1: सकते
0: सकते हैं,
1: हैं।
0: वैसे
1: हाँ
0: नहीं हमारे यहाँ ग्लैडियोलस भी है, जैसे
1: जी
0: बल्ब कहते हैं कि एक कांदा ले एक साल में एक एक फूल आते,
1: हाँ
0: लेकिन ऐसे नहीं है, वो अगर वो 1 साल दे दिस तो ओकर कांदा ला झन निकाला,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: अगले साल फिर
1: जी
0: से वैसे वो दे सकते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: लगातार छत्तीसगढ़ के हमने बात करथन निशा चंदेल बहनी, तो ये बतावा का हमन ये जेन आपके उद्यान के पौधा है आमा, नींबू, चीकू, संतरा, इसी गेंदा फूल के हम खेती करथन, तो इला हमन जैविक ढंग ले कर सकथन का?
0: आराम से हमन जैविक तरीके से कर सकत हन, हमारे
1: जी
0: ये बहुत सारे किसान भाई मन है जेमन जैविक तरीके से खाली वर्मी खाद हो गए, नीम खली हो गए, बोन मील हो गए, जैसे कि कई जना मुर्गी फार्म करते,
1: हाँ
0: ओखर जो भी अवशेष निकलते ते वो
1: जी
0: सबसे बढ़िया अच्छा हमारे खाद के साधन है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: अपने घर के खाद ला तुम अपने खेत में यूज कर सकत था। तो
1: सिर्फ तुम
0: जैविक में
1: कथा
0: जा कवर के जितके रसायन हमारे शरीर में जावत है वह हमारे शरीर ला उतके हानि पहुंचावत है, तो किसान भाई मन चाहे तो अपने घर में जैसे कि गोबर गैया रखे तो
1: जी
0: बढ़िया गोबर खाद बनावे, या एकर अलावा कोनो कति ले केचुआ ले आवे,
1: हाँ
0: वहां से अपन खुद से खाद तैयार
1: वर्मी
0: करके खुद
1: कंपोस्ट है, बीजामृत है,
0: अमृत
1: जीवामृत है,
0: है
1: मतलब
0: सब
1: बना
0: बना
1: सकते, घन
0: सकत
1: अमृत
0: था।
1: बना
0: हाँ
1: सकते।
0: जैसे एजोला वगैरह थोकन आधा किलो एजोला लगावा,
1: हाँ
0: ओखर बाद वो इतना कन का कहते उधर ग्रो कर डालते कि
1: जी
0: हमारा आने रसायन की जरूरत पड़बे नहीं
1: अच्छा,
0: करे।
1: पौध उत्पादन वितरण और पौधरोपण के जानकारी के बाद जब चल गए बहन जी, तो किसान भाई मन जब उनका फायदा हो ही तबे करही निश्चित रूप ले भाई, तो ये बतावा इला हमन रोजगार के दृष्टिकोण से करना चाहथन तो का यह संभव है?
0: रोजगार के दृष्टि से बढ़िया है वह है। देखा जैसे तुमने फल लगाया नींबू के लगाया तेन, अगर अच्छा किस्म लगाया था तो वह 2 साल बाद तो फल दे लग जाते।
1: जी
0: अभी तुमन मार्केट में देखता कि 20 रुपए के 2 ठी 3 ठी बीच में सीजन में ऐसे हो जाते, तो वो तो तुम्हारा 2 साल बाद दिए, ओखर बीच में अंतरवर्ती लगाएन, अंतरवर्ती फसल है तो तुमन लगा कही थे कतका गला देते थे, कोई भी सब्जी लगा था 3 महीना के रही थे, 3 3 महीना में तुमन साल भर में 3 घले डालिया,
1: जी
0: तो जब तक ओखर 2 साल में अगर वो फल देवत है तो 3 साल में तुम्हारा सब्जी के कतका लाभ मिल सकत थे। जैसे कि तुमने टमाटर लगाया ओखर बीच में, तो टमाटर जैसे कि अभी बरसात के टाइम में, अभी देखिए अगर ओला तुमन अच्छा से

0: भाटे लगावा, टमाटर तो चलो पानी में ज्यादा खराब हो जाते, लेकिन भाटा लो का फर्क नहीं पड़े पानी से। तुम्हें साल में अगर 3 महीने में तुम लोग 1 लाख तक के 1 एकड़ में लगा है तो फायदा दे दी, और वहाँ ज्यादा परेशानी ज्यादा कीड़ा बीमारी उतका नहीं लगे। तो ऐसे नहीं है कि तुम्हारो जमीन के भी पूरा उपयोग हो जाते। फिर 2 साल बाद तुम लोग अगर नींबू मिले थे तो नींबू के साथ साथ सब्जी तो तुम लोग देवेज कर ही डीएपी डाल देना चाहिए। तो मैं कहा था किसान भाई मल्ला कि अगर उमल लगत है तो अगर जमीन में तो जिंक सल्फेट हो गए एकर भी थोड़ थोड़ो मल्ला उमल दे देना चाहिए। एकर अलावा के पौधक बढ़वा रहे तो ग्रोथ हार्मोन जैसे प्लानोफिक्स आते ये सब के भी उमल्ला छिड़काव करना चाहिए।
1: चला बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताया है आपने श्रीमती निशा चंदेल जी, आप रहे हो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शासकीय उद्यान मस्तूरी जिला बिलासपुर में। आज हमारे स्टूडियो में आके पौधा उत्पादन वितरण और पौधरोपण के जानकारी ए विषय में विस्तार हमारे कार्यक्रम के सुनिया किसान भाई बहनी मल्ला आप मन जानकारी दे है एतिकन समय दे आप मन हमारा आकाशवाणी ला तेखर सेती आप लगेबो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम।
0: राम राम राजू भैया।
2: तो संगी हो अभी हमन सुनत रहें भेंट वार्ता पौध उत्पादन वितरण और पौधरोपण की जानकारी देवत रहीन है श्रीमती निशा चंदेल ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शासकीय उद्यान मस्तूरी इखर सुगोट बात करत रही से हमार राजो भैया। और संगी हो ये बखत हमन देखत हन गांव में जो नदिया है नाला है ओमा खूब पानी चलत है। आजे हम पेपर में सुने कि छोटे छोटे 3 झन लइका मन स्कूल ले घर जावत रहिन तब बुहागिन। कतको जगह हमन देखा थन गड्ढा है पानी भरे पता नहीं चला है ओम झपा जावत है। कहे का मतलब ये है कि कोनो मेर पुल के ऊपर में पानी को चलत है और जिन जगह नवा है खास करके जिला हम नहीं जाना थन ओला पार करे के जल्दबाजी करे के जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोनो मेर गड्ढा है पानी भरे दिखत है तो ओला थहाय के बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरी है संगवारी हो अभी का है वो देखा था ना लगातार पानी गिरा थे तो सड़क के तीर तीर मन पिच पिचा गए पिलपिला गए थोरको को उतर गए गाड़ी और ब्रेक में लगा था भड़भड़ा के आदमी गिर जावत है बिछल के गा। तो कहे का मतलब हमन ला ये समय में ये चीज के विशेष ध्यान रखना है कि गाड़ी बहुत धीमा चलाना है धीरे चलाना है रफ्तार ज्यादा नहीं होना चाहिए एकर विशेष ध्यान देना है संगवारी हो। और आज हमन ला मौसम विभाग ले जानकारी मिले है जेमा अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री बताइन। और देखा गोट बात करत करत बेरा किसे बुलग गए संगवारी हो पते नहीं चले है ना भाई। तो ऐसने चेत लगा के कार्यक्रम ला सुनिया चिट्ठी पत्री भेजत रिया अवैया बेरा में आऊ मिलबो नवा नवा जानकारी के संग नवा नवा गीत संगीत के संग। और आज के कार्यक्रम के बेरा यह सिरावत है आओ अंदाज बित्री मया पीड़ित बना के अपन चैतु भाई लदाओ विदा। आज के कार्यक्रम ले आप जमो श्रोता संगवारी मल्ला आप सबके मैं आरू चैतु भाई के राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अब हम कलाकार सपना अवस्थी के गाए हुए गीत।

ये गीत आपने सुना सपना अवस्थी की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं होती, बरसों बाद भी जब वे कानों तक पहुंचती हैं तो मन ठहर जाता है, कोई पुरानी याद सामने आ जाती है और अनायास ही होठ उन गीतों को गुनगुनाने लगते हैं। आज

24 अगस्त है। ये दिन हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह की पुण्यतिथि है। कल्याण जी ने अपने भाई आनंद जी के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा के संगीत को एक अलग पहचान दी। उनकी धुनों में प्रेम की कोमलता थी, लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू थी, जिंदगी का उल्लास था और बदलते दौर के संगीत की आधुनिकता भी। करीब 250 फिल्मों में संगीत देने वाली इस जोड़ी ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे महान गायकों के साथ यादगार गीत रचे। तो आज की रजनीगंधा समर्पित है कल्याण जी की उन्हीं अमर धुनों को। तो आइए गीतों के जरिए याद करते हैं उस संगीतकार को जिसकी बनाई धुनें आज भी हमारे साथ हैं।

फिल्म थी हिमालय की गोद में, वर्ष 1965, गीतकार आनंद बख्शी और आवाज मुकेश की। कल्याण जी आनंद जी की सरल और मधुर धुन ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। प्रेम की अभिव्यक्ति जब इतनी सहज हो तो गीत सीधे दिल तक पहुंचता है।

ये गीत सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं, बल्कि उस दौर के फिल्म संगीत की एक मिसाल है, जब धुन की खूबसूरती और गायक की आवाज मिलकर गीत को यादगार बनाती थी। कल्याण जी की खासियत थी कि वे गायक की आवाज को समझते थे। मुकेश की आवाज में जो ठहराव और सहजता थी, उसके अनुरूप धुन को बहुत स्वाभाविक रखा था। और यही कारण है कि कल्याण जी आनंद जी के गीतों में हमें अलग अलग गायकों के साथ अलग अलग संगीत संसार दिखाई देता है। इसी 1965 के वर्ष में एक और फिल्म आई, जब जब फूल खिले। ये फिल्म कल्याण जी आनंद जी के संगीत सफर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। और अब जो गीत हम सुनने जा रहे हैं, उसमें प्रकृति, प्रेम और मौसम तीनों का सुंदर मेल है। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के शब्द और कल्याण जी आनंद जी की धुन, ये गीत सुनते हुए महसूस होता है कि कल्याण जी केवल शब्दों के लिए धुन नहीं बनाते थे, बल्कि गीत के पूरे वातावरण को संगीत में उतार देते थे। तो सुनते हैं फिल्म जब जब फूल खिले का ये सदाबहार गीत।

कितनी खूबसूरती से एक पूरा वातावरण संगीत में रचा गया है। कल्याण जी आनंद जी की यात्रा को देखें तो ये समझ आता है कि उनकी सफलता केवल अच्छी धुन बनाने तक सीमित नहीं थी। वे फिल्म की कहानी, पात्र और परिस्थिति को समझकर संगीत रचते थे। इसलिए एक तरफ प्रेम का इतना कोमल गीत मिलता है तो दूसरी तरफ आगे चलकर उनकी धुनों में शहरी जिंदगी, युवा ऊर्जा और मस्ती भी दिखाई देती है। और 1970 का दशक आते आते हिंदी सिनेमा भी बदल रहा था, फिल्मों की कहानियां बदल रही थी, नायक का अंदाज बदल रहा था और संगीत में भी नई ऊर्जा आ रही थी। कल्याण जी आनंद जी ने इस बदलाव को बहुत अच्छी तरह पकड़ा। 1970 की फिल्म जॉनी मेरा नाम का एक ऐसा गीत जिसमें रोमांस के साथ शरारत और चंचलता भी है, देवानंद और हेमा मालिनी की फिल्म जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अपने आप में एक अलग रंग लेकर आता है। किशोर कुमार की आवाज़ में मौजूद मस्ती और कल्याण जी आनंद जी की चंचल धुन दोनों मिलकर गीत को बिल्कुल अलग अंदाज देते हैं। ये वही कल्याण जी हैं जिनके संगीत में हमने अभी इतनी कोमलता सुनी थी। यानी एक ही संगीतकार जोड़ी जरूरत के मुताबिक अपनी धुन का पूरा रंग बदल सकती थी। तो सुनते हैं।

यही तो कल्याण जी की संगीत प्रतिभा थी। एक ओर मुकेश की आवाज के लिए सहज और ठहरी हुई धुन, दूसरी ओर किशोर कुमार की मस्ती और ऊर्जा के लिए चंचल संगीत। कल्याण जी आनंद जी ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े गायकों के साथ काम किया और उनकी आवाज के स्वभाव के अनुसार संगीत को ढाला। लेकिन उनकी संगीत यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था भारतीय लोक धुनों और देश की मिट्टी से जुड़ा संगीत। वे समझते थे कि फिल्म संगीत को भारतीय समाज की अपनी धुनों से जोड़कर ही वे लोगों के लिए दिल तक ज्यादा गहराई से पहुंच सकता है। और इसी रंग का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है उपकार। 1967 की फिल्म उपकार भारतीय सिनेमा में देश, किसान और मिट्टी से जुड़े भावों के लिए विशेष रूप से याद की जाती है। और इस फिल्म का गीत मेरे देश की धरती, महेंद्र कपूर की बुलंद आवाज, गुलशन बावरा के शब्द और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत में केवल देशभक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय किसान और उसकी मेहनत के प्रति सम्मान है। कल्याण जी के संगीत का ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। वे सिर्फ मनोरंजन के लिए संगीत नहीं रचते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर गीत को सामाजिक और राष्ट्रीय भावनाओं से भी जोड़ देते थे। तो आइए सुनते हैं ये अमर गीत।

आज भी जब ये गीत बजता है तो भारतीय मिट्टी, खेत और किसान की तस्वीर सामने आ जाती है। यही किसी संगीतकार की बड़ी सफलता है, जब उसकी बनाई धुन किसी एक फिल्म से निकलकर समाज की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाए। कल्याण जी आनंद जी का संगीत यही नहीं रुकता, उनके संगीत में प्रेम है, देशभक्ति है, मस्ती है, लेकिन इसके साथ एक और बहुत खूबसूरत पक्ष है, रोमांटिक गीतों की ऐसी धुनें जिन्हें सुनते हुए समय जैसे ठहर जाता है। 1973 की फिल्म ब्लैकमेल एक गीत इस फिल्म का इसे खूबसूरत संगीत संसार की याद दिलाता है। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आज भी प्रेम गीतों की दुनिया में बेहद लोकप्रिय है। फिल्म ब्लैकमेल, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत की सबसे खूबसूरत बात इसकी सादगी है और इसी कारण ये गीत पीढ़ियों तक सुना जाता रहा है।

0: कुछ गीतों की उम्र नहीं होती, वे अपने समय में लोकप्रिय होते हैं और फिर समय बीतने के बाद भी नई पीढ़ी उन्हें सुनती है। अब चलेंगे 1978 की फिल्म डॉन की ओर, और यहाँ कल्याण जी आनंद जी का संगीत अपने बिल्कुल अलग रंग में नजर आता है। इसमें लोक रंग है, बनारस की अपनी मस्ती है, किशोर कुमार की आवाज का ठेठ अंदाज है। एक तरफ पल पल दिल के पास जैसी कोमल धुन और दूसरी तरफ खई के पान बनारस वाला जैसी मस्ती, यही विविधता कल्याण जी आनंद जी के संगीत की पहचान है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक।

कार्यक्रम में आज गीतों के जरिए कल्याण जी की संगीत यात्रा को महसूस करने की कोशिश की गई, लेकिन इन छह गीतों में उनकी पूरी कहानी समा नहीं सकती। उनकी धुनों में कभी प्रेम की कोमलता सुनाई देती है और कभी भारतीय मिट्टी की खुशबू, कभी युवा मन की चंचलता, तो कभी जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज। और शायद यही वजह है कि कल्याण जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे बीच है। 24 अगस्त 2000 को कल्याण जी इस दुनिया से विदा हो गए थे, लेकिन संगीतकार की असली विरासत उसके जाने के बाद शुरू होती है, जब उसकी बनाई धुनें अगली पीढ़ी गुनगुनाती है। कल्याण जी को याद करना यानी हिंदी फिल्म संगीत के उस दौर को याद करना, जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, वे यादों में बस जाते थे। कल्याण जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और संगीतांजलि। और अब कार्यक्रम से विदा दीजिए अपनी रेडियो साथी श्वेता पांडे को। नमस्कार। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब हम समाचारों का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच

0: सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
0: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों

0: से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केउझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को

0: गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary ERS, Mayank Singh, were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade.

अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में, साथ में वैजयंती माला की आवाज़ भी है, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज। फिल्म का नाम आप जान ही गए होंगे, संगम।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में शागिर्द फिल्म से। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

झाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी, यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए।

आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954, अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

0: हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें दे के जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं

उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। तो मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज़।

कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल के लुट जाने का इजहार हो ये जरूरी तो नहीं, ये तमाशा सरे बाजार हो ये जरूरी तो नहीं। मैं तुझे टूट कर चाहूं तो मेरी तरफ से, तू भी हो मेरा तलबगार ये जरूरी तो नहीं। ऐ सितमगर जरा झांक कर मेरी आंखों में देख, जुबां से हो प्यार का इजहार ये जरूरी तो नहीं। मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से हो कोई सरोकार ये जरूरी तो नहीं।

तुम्हारी खातिर चलो ये माना, मैं सब करूंगी, तुम्हारे सारे हुक्म सुनूंगी, मगर बताओ ना तुम ये कर सकोगे? किसी हसीना को राह चलते नहीं तकोगे, कोई पुरानी पड़ोसन मिले कहीं तो नहीं रुकोगे। मेरी सांसें, मेरी नींदे, मेरे इरादे सब तुम्हारे, मगर बताओ तुम्हारे दिन रात की लगन में मैं किस कदर हिस्सेदार ठहरी? तुम्हारी सांसें, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी ख्वाहिश में मैं कहाँ हूँ? ये जिंदगी में जो अबतरी है, ये तुम्हारा काम सारा जो दफ्तरी है, जो महीना चाहत का फरवरी है, क्या मुझको इन सब पे बरतरी है? या सारे जज्बात ये प्यार तुम्हारा है सब हकीकत या

बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो। एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा एहसास हुआ, वो एहसास तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चली फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, मैं समझी तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी, मैं समझी तुम मुझे छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। आओ हम तुमको बताएं मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी को देखते ही धड़कनों में सुर बिखर जाएं, चमक आंखों की बढ़ जाए, किसी की याद में शामो सहर का फर्क मिट जाए, सुलगती रात कट जाए, तस्वुर से किसी की चांदनी रातें महक उठे, किसी के बिन जब सब कुछ अधूरा हो, न सूरज में तपिश बाकी रहे न चांद पूरा हो, ठहर जाए जो उस रुखे रोशन पर, पलटना भूल जाए दिल, किसी की दीद की खातिर जबी सजदे में झुक जाए, नजर जब आए तो बेसाख्ता कह दे जुबां, ऐ काश मौला

0: कोई खुशबू हो, गुल हो या कोई रंगे हिना हो तो, कड़कती धूप में कोई अब्र या साया घना हो तो, किसी का साथ अपनी इब्तिदा वो इंतहा हो तो, कोई खुद दर्द हो, हम दर्द हो और खुद दवा भी हो, किसी का हाथ जब अपने लिए दस्ते शिफा भी हो, फिर ऐसे में ये सब एहसास, सारी कैफियतें और सिलसिले मिलकर अनोखी शय बनाते हैं, जिसे कहते भी हैं, सुनते भी हैं और सब सुनाते हैं, मोहब्बत जिसको कहते हैं।
1: या हबीबी।

सुनो जाने जा, अगस्त में तुम्हारी यादें दिल को चीर जाती हैं। ठंडी हवा से ना आशना शामें, सितारों से भरी रातें के जिनमें नींद की देवी भी उकताई सी लगती है।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ढलती जाए रात,
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब हम समाचार के लिए जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
4: With a large domestic market.
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में

0: मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन कॉप 17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and foreign minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representative talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. India has stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav said this in Ulaanbaatar, Mongolia today. He was addressing the ministerial dialogue on innovative financial mechanisms for healthy land and drought resilience during the 17th session of the Conference of the Parties to the UN Convention to Combat Desertification. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India will amend existing regulations and introduce new rules over the next 2 months to address concerns raised by companies seeking to set up manufacturing operations in the country. Speaking during a program in Tokyo, Mr. Goyal said